नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।

0: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमरीका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमरीका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशमदीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

का चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर भी और डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर भी। और हम आपको शुरू में ही कार्यक्रम के शुरू में ही आपको बता देते हैं अपना ईमेल आईडी ताकि आप हमें ईमेल भेज पाएं, हमें बता पाएं कि कार्यक्रम कैसा लग रहा है। fmgold@gmail.com जी हाँ fmgold@gmail.com। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो सखी राधा पाठक, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मन की दुनिया जितनी सीधी है उतनी ही जटिल भी है। कई बार किसी बात के चलते मन की सेहत की जड़ें ज्यादा ही हिल जाती हैं। हम बहुत तनाव ले लेते हैं तो भावों की बिगड़ते संतुलन को साधने के लिए घर हो या बाहर हमें एक व्यवस्थित नियम अपनाना ही होगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और स्वस्थ रहना है तो खुश रहना बहुत जरूरी है और खुश रहने के लिए जरूरी है कुछ समय निकालिए अपने लिए अपनों के लिए।

आंधी भी चल रही है और हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अब इतनी गर्मी चल रही थी, गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हर साल 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाता है और अभी चल रहा है इसका पखवाड़ा। जी हाँ, 31 मई से लेकर 14 जून तक ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू और निकोटिन उत्पादों से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना है। आज के समय में पारंपरिक तंबाकू उत्पादों के साथ साथ ई सिगरेट और एंड्स ENDS, जी हाँ आज मैं बताऊंगी एंड्स के बारे में। ENDS यानी इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, इसका उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है, खासकर युवाओं में। कई लोग इसे सुरक्षित मानते हैं जबकि यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। आज इसलिए बताना जरूरी है कि हमारे घर में जो महिलाएं रहती हैं उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि ये ई सिगरेट कैसी दिखती है। ये कुछ कुछ पेन ड्राइव जैसी दिखती है, किसी को लगेगा कि मार्कर पेन है और कभी ये भी लग सकता है कि ये एक इत्र की शीशी है या बच्चे ने अगर आपके ये इस्तेमाल करा है, आप सोचेंगे कोई परफ्यूम है छोटा सा। बहुत खूबसूरत पैकिंग में आता है और इसमें ना तो बदबू होती है ना ही धुआं होता है कि पता भी नहीं चलेगा कि घर में कोई ई सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है। ई सिगरेट बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो निकोटिन और अन्य रसायनों को भाप के रूप में शरीर में पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें वेप पेन, ई हुक्का के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग फ्लेवर मिलते हैं, मतलब इतने फ्लेवर हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें मिंट और मेंथॉल जैसे ठंडे और ताजे एहसास भी हैं। फलों की बात करें तो आम, सेब, बेरी, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, सब तरह के इसमें फ्लेवर्स आते हैं। डिजर्ट्स के फ्लेवर हैं, हर्बल फ्लेवर भी हैं जो लौंग के, काली मिर्च के हैं। ये भी कह सकते हैं बच्चों की हर्बल है ये, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सेहत के लिए कोई चीज नुकसान है तो वो हर्बल कैसे हो सकती है। ये सब आपको बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, इसलिए सब लोग ध्यान दें कि ई सिगरेट एंड शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ई सिगरेट में मौजूद निकोटिन बहुत ज्यादा नशे की लत पैदा करता है और इस पर एक बार इसकी आदत लग जाए तो इसे छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। इस बारे में और भी बात करेंगे, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

मुस्कुराहट की आवाज में ये गीत धरती कहे पुकार के फन से था। और दिल्ली के मौसम को देखते हुए आज के ये गीत बिल्कुल सटीक है, क्योंकि थोड़े थोड़े बादल हर जगह हैं।

रात फिर ना आएगी। इस फिल्म में अभी आपने आशा भोंसले और मिन्नू पुरुषोत्तम को सुना। अब हम बात कर रहे थे एंस की। एंस यानी इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते भी नहीं है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इसके बारे में अच्छे से जानती है कि वेप्स क्या होते हैं। बहुत सारे नुकसान है इसके। एक तो लत लगना सबसे बड़ा नुकसान है कि इसकी लत लग जाती है और आदत लगने पर इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। फेफड़ों को नुकसान है ही, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खांसी और गंभीर फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। हृदय रोग का खतरा हो सकता है, जो हमारी युवा पीढ़ी उसके दिमाग पर असर हो सकता है, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है, तनाव होता है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और सेकेंड हैंड वेप का भी बहुत खतरा है, क्योंकि जो ई सिगरेट है अगर कोई पी रहा है और आपको, तो क्योंकि धुआं दिखेगा नहीं आपको और बदबू भी नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसका सेकेंड हैंड स्मोकिंग जो पैसिव स्मोकिंग है वो साथ वाला बंदा तो ले ही रहा है ना, जो साथ बैठे हैं। तो इसलिए इसको भी नकारना जरूरी है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोगों को मना कर पाए और इसके लिए जागरूक रह पाए। ये दिखने में सामान्य सिगरेट या पेन जैसी होती है, मतलब लगेगा जैसे पेन है या पेन ड्राइव है, या बहुत सुंदर सुंदर फ्लेवर्स भी आ रहे हैं अगर आप देखेंगे तो। इतनी सुंदर शीशी और इतने सुंदर पैकिंग में आता है कि लोगों को, मतलब युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए सब होता है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से धुआं भाप देने वाले पारंपरिक डिजाइनों के विकल्प के रूप में यह आता है, और इसमें बहुत सारे खतरनाक रसायन होते हैं जिससे सीधा असर होता है सेहत पर। अब इसके बारे में एक चीज और है कि एक एक्ट है 2019 में बनाया गया था, पैका एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट। इसके तहत ई सिगरेट और सभी प्रकार के एंड्स उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत में। भारत में इन्हें बनाना, बेचना, आयात निर्यात करना, विज्ञापन देना या अपने पास इसे रखना गैर कानूनी है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए कि भारत में ये गैर कानूनी है। अब स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि भले ही इसे पारंपरिक सिगरेट के सुरक्षित विकल्प के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन ICMR यानी चिकित्सा अनुसंधान की गाइडलाइंस के अनुसार ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसमें मौजूद निकोटिन दिमाग को नुकसान पहुंचाता है और युवाओं को बीमार कर सकता है। इसके केमिकल फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं और ये रक्तचाप और दिल की धड़कन को भी अनियंत्रित कर सकता है। इसलिए ई सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, इन सबसे बहुत दूर रहना बहुत जरूरी है, और सबको इस बारे में जागरूक रहना भी जरूरी है कि अपनी जिंदगी में हमेशा खुशियां बांटिए। ये चीजें इस्तेमाल करके बीमारियां ही बढ़ेंगी, जिसका आपको ध्यान रखना है।

कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं बहुत सारे काम की बातें और अब बात करेंगे एक योजना की, भारत सरकार की दिव्यांग कल्याण योजना। जैसे स्वावलंबन कार्ड है, यूडीआईडी है, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यानी डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पहचान पत्र है जो पूरे देश में मान्य है। इसे कहते हैं स्वावलंबन कार्ड यानी यूडीआईडी। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के सभी दिव्यांगजनों का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार करना और उन्हें कागजी दस्तावेजों के झंझट से मुक्ति दिलाना, ताकि किसी को परेशान न होना पड़े, इधर उधर भागना न पड़े। सिर्फ एक कार्ड बन जाएगा तो हर जगह उनका डाटा रहेगा। इसके मुख्य लाभ और विशेषताएं भी आपको बता देती हूँ। एक सिंगल डॉक्यूमेंट है। विभिन्न सरकारी लाभों का लाभ उठाने के लिए कई प्रमाण पत्र प्रतियां साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कार्ड में सभी आवश्यक जानकारियां डिजिटल रूप से दर्ज की जाएंगी। राष्ट्रव्यापी मान्यता है इसको। ये कार्ड भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से स्वीकार्य है, इसलिए एक कार्ड आपकी बहुत सारी चीजों की मुश्किलों को कम कर देगा। इसके माध्यम से योजनाओं के वित्त

पारदर्शिता आती है और लाभार्थियों को भौतिक और वित्तीय प्रगति को ट्रैक किया जा सकता है, बताया जा सकता है उन्हें, और उन्हें भी ट्रेस किया जा सकता है। सुगम प्रमाणीकरण भी है। सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और अस्पतालों में दिव्यांगता के प्रकार और स्तर के त्वरित सत्यापन में मदद मिलती है। वेरिफिकेशन हो जाता है कि क्या चाहिए आपको। इस पर और भी बात करेंगे इस गीत के बाद।

आशा भोसले को। हम बात कर रहे थे स्वावलंबन कार्ड की। जी हाँ, यूडीआईडी कार्ड, इससे बहुत सारे लाभ हमारे दिव्यांगजनों को मिल जाते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के पास 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का यूडीआईडी कार्ड है तो बहुत सारे उसे लाभ मिलते हैं। यात्रा में छूट मिलती है, स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, उपकरण भी मिलते हैं, शिक्षा में छात्रवृत्ति मिलती है, वित्तीय सहायता भी दी जाती है। और अगर सरकार ने दिव्यांगजनों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए दो बड़ी कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं। बता दूं आपको, यहाँ एक है दिव्यांगजन कौशल योजना। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आईटी, एनिमेशन, गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में आधुनिक और उद्योग अनुकूल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि उन्हें गरिमापूर्ण रोजगार जो है वो मिल सके। दिव्यांग सहारा योजना, इस योजना के तहत अत्याधुनिक सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को एकीकृत करने के लिए भारी निवेश किया जा रहा है, जिसका संचालन किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो शामिल हैं। तो आप स्वावलंबन आईडी कार्ड अगर बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए। अब कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। प्रांजल पाटिल, भारत की पहली दृष्टि बाधित महिला आईएएस अधिकारी। बचपन में बहुत संघर्ष किया, अब प्रेरणादायक कहानियां जो होती है ना, जो व्यक्तित्व होते हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के उल्हासनगर की रहने वाली प्रांजल ने मात्र 6 वर्ष की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह गंवा दी थी। एक स्कूल के साथी ने गलती से उनकी आंख में पेंसिल मार दी थी, जिससे उनकी एक आंख खराब हो गई थी। बाद में उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई, लेकिन इस दृष्टिहीनता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की और दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल और पीएचडी की। प्रांजल ने बिना किसी कोचिंग के केवल सॉफ्टवेयर की मदद से किताबें सुनकर यूपीएससी की तैयारी की। उन्हें पहले ही प्रयास में 773वीं रैंक हासिल हुई। उन्हें भारतीय रेलवे लेखा सेवा आवंटित की गई, लेकिन रेलवे विभाग ने उनकी 100% दृष्टिहीनता का हवाला देकर उन्हें नौकरी नहीं दी। उन्होंने 2017 में फिर से कड़ी मेहनत करके 77वीं रैंक हासिल की और देश की पहली दृष्टि बाधित महिला आईएएस अधिकारी बनी। इसलिए तो मैंने कहा कि वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं। यही तो ये साबित होता है कि अगर मेहनत हो, लगन हो, आत्मविश्वास हो तो कुछ भी किया जा सकता है। प्रांजल पाटिल को केरल कैडर मिला। उन्हें तिरुवनंतपुरम में उप कलेक्टर के रूप में अपना कार्यभार संभालकर देश की सेवा शुरू की। हम सलाम करते हैं ऐसे व्यक्तित्व को।

भाइयों से, अपनी बहनों से, क्योंकि हमारा घर आंगन जो कार्यक्रम है वो खास महिलाओं के लिए है। बार बार कहते हैं कि योग बहुत जरूरी है। हम ये भी कहते हैं कि अपने लिए समय निकालिए, और समय तो निकालना ही पड़ेगा। अब मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य के लिए योग बहुत जरूरी है। अब योग दिवस भी आने वाला है, तो क्यों ना अब हर बार ये सोच कर कि कल करेंगे ये ना करते हुए योग शुरू किया जाए। और योग बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार आप शुरुआत करेंगे तो आपके शरीर और मन दोनों की इसकी आदत हो जाएगी। बहुत आसान से थोड़े से आसन मैं आज आपको बता रही हूँ, ताड़ासन। इसे कहते हैं माउंटेन पोज। सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, उंगलियों को आपस में फंसाकर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, यानी स्ट्रेचिंग करनी है आपको अपने शरीर को। नीचे पैरों से खड़े होकर, सीधे खड़े होकर, हाथों को ऊपर करके, इससे क्या होता है, शरीर का पोस्चर सुधरता है, लंबाई भी बढ़ती है अगर बच्चे युवा कर रहे हैं तो। वृक्षासन यानी ट्री पोज, एक पैर पर सीधे खड़े हों, दूसरे पैर के तलवे को जांघ से टकराएं, हाथों को नमस्कार मुद्रा में ऊपर ले जाएं। इसका जो लाभ है वो बताऊं, शरीर पर बैलेंस बना रहता है और एकाग्रता भी आती है। सुखासन यानी इजी पोज जो होता है वो है जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद करके गहरी सांस लें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। मानसिक टेंशन दूर होती है, मन शांत रहता है। देखिए, सांसों पर आप जितना कंट्रोल कर पाएंगे योग के जरिए, आपकी बीमारियां भी दूर होंगी और आपका मन और तन दोनों स्वस्थ रहेगा। भुजंगासन, कोबरा पोज कहते हैं इसको, पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को छाती के पास रखकर शरीर के अगले हिस्से को ऊपर उठाएं, इससे पीठ और कमर का दर्द दूर होता है। मार्जरी आसन यानी कैट काउ पोज, घुटनों और हाथों के बल बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली चलती है या गाय चलती है वैसे हो जाएं। सांस लेते हुए पीठ को नीचे करें, सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर करें गोल, इससे रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। बालासन यानी चाइल्ड पोज, घुटनों के बल बैठ जाएं, वज्रासन जिसे कहते हैं, अब आगे की ओर झुकते हुए सिर को जमीन से छुएं और हाथों को आगे फैलाएं, इससे थकान और तनाव तुरंत दूर हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी जरूरी बात ये बता दूं कि जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, शरीर को जितना आराम से आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही करें। दर्द होने पर रुक जाएं, सांसों पर ध्यान दें। आसन करते समय सांस को रोकना नहीं है बल्कि सामान्य रूप से सांस लेना और छोड़ना है। खाली पेट करना चाहिए योग, ज्यादातर खाली पेट करना चाहिए। अगर आप खाली पेट करेंगे तो इसका फायदा होगा, या खाना खाने के कम से कम 4 घंटे बाद योग किया जा सके।

रंग, इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को, और हमने आपको अपना ईमेल आईडी बताया था क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बातचीत एक तरफ रहे। आप हमें ईमेल भेजिए, तभी तो ये बातचीत दोनों तरफ से होगी। हमारा ईमेल आईडी भी हमने आपको बताया था, fmgoalgia@gmail.com। कुछ ईमेल्स हमें मिले हैं, हम पढ़ देते हैं। गौरीशंकर जी की नांगलोई से मिली है, जिन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है, उन्हें ई सिगरेट के बारे में भी बताना पसंद आया। संगीता पाल जी अहमदाबाद गुजरात से लिखती हैं। राजू अग्रवाल केशव जिला हस्ताहो हरियाणा से लिखते हैं। और भी बहुत सारी मेल आ रही हैं हमें। सुदर्शन मुखी साहब की मेल मिल गई है, तो आप भी मेल लिखिए। अब सुदर्शन मुखी साहब, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से लिखते हैं। और आप सब भी बताइए कि क्या चाहिए आपको कार्यक्रम में, और कैसा लग रहा है हमारा ये महिलाओं का कार्यक्रम। अब हम बात करेंगे बेल की। जी हाँ, गर्मी के मौसम में बेल खाना फायदेमंद है, ये तो सभी जानते हैं। बेल बहुत गुणकारी है और चमत्कारी फायदे हैं इसके, पेट के रोगों के लिए तो रामबाण है। अब आयुर्वेद में बेल के पेड़, यानी बेल जैसे बेल पत्र होता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं, ये तो सभी जानते हैं। और जो बेल का जो फल होता है उसे बेल कहा जाता है, उसका इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। कब्ज, गैस, अपच और दस्त को जड़ से खत्म करता है। पका हुआ बेल का गूदा आंतों की सफाई करता है। गर्मियों में बेल को शरबत जो है वो पिया जाता है, शरीर को ठंडक मिलती है, डिहाइड्रेशन दूर होता है, लू नहीं लगती, पेट की गर्मी को शांत करता है। बेल की पत्तियों का रस या इसका कच्चा पाउडर ब्लड शुगर लेवल

को कंट्रोल करने में मददगार है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, इसलिए कहते हैं गुड़कारी बेल।

आप ये सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज। बात चल रही थी बेल की, जी हाँ, गुणकारी और चमत्कारी बेल की। अब पाचन तंत्र में इसमें सुधार होता है, ये मैंने आपको बताया। क्रोनिक डायरिया और जो होता है ना दस्त लग जाते हैं, वो भी ठीक करता है, कब्ज भी ठीक करता है, अगर इसे ठीक सिखाया जाए। इसके फल और पत्तों के अर्क में फंगस और बैक्टीरिया से लड़ने की गजब की क्षमता होती है। अगर किसी को लगता है ना कि उसे फंगस की बीमारी है, जैसे उंगलियां फट जाती हैं, कई बार पैरों की उंगलियों में फंगस हो जाती है, तो बेल का इस्तेमाल कीजिए। सूजन को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, आंतरिक अंगों की सूजन और जोड़ों के दर्द में आराम देता है। अगर आपको पुरानी कॉन्स्टिपेशन है तो पके हुए बेल का गूदा खाएं और शाम को इसका शरबत पिएं। कच्चे बेल को आग में भूनकर या सुखाकर बनाएंगे। बेलगिरी का जो चूर्ण होता है उसे मट्ठे के साथ खाया जा सकता है, तो जो दस्त होते हैं ना वो रुक जाते हैं। डायबिटीज अगर आपको है तो बेल के 4-5 ताजे पत्तों को पीसकर सुबह खाली पेट इसका रस पिएं। अगर आपको गर्मी लग रही है या डिहाइड्रेशन हो गया है तो पके बेल के गूदों को, जो गूदा होता है ना, पानी में मैश कर लीजिए। मैश करके उसे छान लीजिए, उसमें मिश्री और भुना जीरा मिलाकर शरबत बनाइए। इसे कहते हैं बेल का ठंडा ठंडा शरबत, और वो पीजिए, पेट की गर्मी को शांत करता है। लेकिन एक चीज है कि गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बेल ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ना ही उसका शरबत पीना चाहिए। और अगर आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं तो भी डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप बेल ले सकते हैं। इसलिए हर चीज को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मगर

की आवाज़ में और अपने जीवन में छोटे छोटे बदलावों से आप अपनी जिंदगी को मजबूती दे सकते हैं। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम घर आंगन से मुझे यानी राधा को दी इजाजत, सुनते रहिए ये गीत।

अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल

स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: major initiative to cover border areas has commenced in Rajasthan. The minister said the plan is to provide comprehensive coverage across the entire border belt of the country, stretching all the way from Kashmir.
1: Today, a new 20 kilowatt FM transmitter was launched in Jaisalmer, which will cover not only the district but also surrounding regions. About an 80 kilometer radius and nearly 20,000 square kilometers. This is a significant step forward.
0: All three Indian seafarers who were initially reported missing after the tragic incident aboard the commercial vessel Palau-flagged MT Sethabelo have now been confirmed dead. The tanker was hit off the coast of Oman in a suspected U.S. missile strike. In a social media post, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, said the bodies of three seafarers have been located and identified. Trinamool Congress MP Prakash Chigwaraik has resigned as a member of the Rajya Sabha. He has sent his resignation letter to Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan. Earlier, Trinamool Congress leaders and Rajya Sabha members Shukhendu Shekhar Rai and Sushmita Dev had resigned from both the Rajya Sabha and the party. The United States carried out a new round of military strikes on Iranian targets, prompting Tehran to announce the closure of the strategically vital Strait of Hormuz and launch retaliatory actions against regional locations hosting U.S. forces. U.S. Central Command said it had completed a second consecutive day of self-defense strikes targeting Iranian air defense systems, radar installations, communications infrastructure, and surveillance capabilities in response to what Washington called continued Iranian aggression. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर. वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और 15 सेकंड और ये समय है आपके पसंदीदा प्रोग्राम नाम है जिसका एक ही सिन से. प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं ये संदेश.
3: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान. जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान.
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते. टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते. जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार.
5: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है. आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं.
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
2: आज हम आपके लिए चुनकर लाए हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 46वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए चुना गया था इस फिल्म को. और ये फिल्म जो कि नरेंद्रनाथ मित्रा की बंगाली कहानी रस पर आधारित है. राजश्री प्रोडक्शन में तारा चंद बरजात्या द्वारा प्रोड्यूस और कला निर्देशक से निर्देशक बने सुधेंद्र रॉय द्वारा लिखी और डायरेक्ट की गई ये खूबसूरत सी फिल्म जिसके संवाद लिखे थे पी एल संतोषी यानी कि राजकुमार संतोषी के पिता ने और छायांकन था दिलीप रंजन का. दिलीप रंजन मुखोपाध्याय जिनमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, नूतन और पद्मा खन्ना. फिल्म के सभी गीत हिट थे और हिट हैं. तो पहले आप इस गीत को सुनिए, अंदाजा लगाइए कि आज की फिल्म कौन सी है. फिलहाल आपको बता देती हूँ कि आज प्रोग्राम एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे. आप भी मेरे साथ इस सफर में हम सफर बन सकते हैं अपने

आपके लिए लेकर आए हैं 1973 की वो फिल्म जो सुपर डुपर हिट थी, सौदागर। जी हाँ, और ये फिल्म 131 मिनट की अवधि वाली फिल्म जो कि मोती की कहानी पर आधारित थी। मोती जो खजूर का रस निकालकर अपना जीवन यापन करता है। नरेंद्रनाथ मित्रा की बंगाली लघु कहानी रस पर आधारित ये फिल्म संदेश छोड़ती है कि किसी दूसरे को दुखी करके खुशी हासिल नहीं की जा सकती। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने अपने एंग्री यंग मैन की छवि से निकलकर खजूर के रस से बने गुड़ को बेचने वाले मोती की भूमिका निभाई थी। नूतन, जिन्होंने महजुबीन नामक एक गरीब विधवा और मोती की व्यापारिक साझेदारी की एक सशक्त भूमिका निभाई थी। वहीं पद्मा खन्ना, जिन्होंने अपनी खलनायिका वाली छवि से हटकर फूलबानो की भूमिका निभाई, जिनके अभिनय की सभी ने तारीफ की।

का संगीत तैयार किया था रविंद्र जैन ने, और गीत भी रविंद्र जैन ने ही लिखे थे, जिन्हें अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर, मन्ना डे और मोहम्मद रफी साहब ने। फिल्म का सबसे हिट सॉन्ग रहा सजना है मुझे सजना के लिए, जो आज भी लड़कियां, महिलाएं, इन सब की जुआ पर रटा हुआ है। किशोर दा की आवाज में अभी आप जो गीत सुन रहे थे हर हसीन चीज का, और लता दी की आवाज में तेरा मेरा साथ रहे जैसे गीतों ने फिल्म सौदागर को यादगार बना दिया। फिल्म में पद्मा खन्ना ने खूब नाम कमाया। सजना है मुझे सजना के लिए गीत

फिल्माया गया था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लगी थी। आपको याद होगा पद्मा खन्ना, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में केकई का रोल प्ले किया था और दर्शकों की खूब वाहवाही भी लूटी थी, और इन्हीं पर ये हिट सॉन्ग भी चॉइस किया था। तो चलिए सुनते हैं इसी गीत को आशा जी की आवाज में।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे तो वही से
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से आज हम लेकर आए हैं 1973 की एक सुपरहिट फिल्म सौदागर आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे और आपको बता दूं कि आप हमारे इस चैनल पर जी हां आपके अपने इंद्रप्रस्थ चैनल पर हर रोज दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक एक और नया प्रोग्राम सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का तो इस बार भी आप हमेशा की तरह अपने संदेशों के जरिए उस प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं तो आपके साथ 3:30 बजे तक एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगी फिलहाल इसी फिल्म का एक और गीत आप तक पहुंचा रही हूं।

14 अगस्त जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन और नूतन की जोड़ी ने दर्शकों को जरूर इम्प्रेस किया। अमिताभ बच्चन का मोती का किरदार आज भी हिट है। यह अमिताभ बच्चन के करियर की पहली फिल्म थी जिसे 46वें एकेडमी अवार्ड्स में भारत की ओर से ऑफिशियली एंट्री ली थी। फिल्म बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी के लिए चुनी गई थी, लेकिन इसे ऑस्कर में नॉमिनेशन नहीं मिल पाया था। फिल्म की शूटिंग पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के गांव में हुई थी।

आपको बता दें कि 1969 में ये फिल्म नूतन और संजीव कुमार के साथ बनाई जानी थी, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसमें कुछ तकरार, कुछ अनबन और नूतन और संजीव कुमार का कुछ ऐसा झगड़ा हो गया जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्में नहीं की। मगर 1972 में अमिताभ बच्चन को लेकर ये फिल्म बनाई गई। प्रेम, विश्वासघात, लालच, पितृसत्ता और लैंगिक पूर्वाग्रह जैसे विषयों को उजागर करती ये फिल्म सौदागर आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्म की लिस्ट में शामिल है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये फिल्म हमेशा की तरह जरूर पसंद आई होगी। ढेर सारे संदेश भी आपके पहुँचे हैं, उन्हें बस मैं शामिल कर रही हूँ।

रोशन लाल देवनगन, कौशला हेमलता, डिंपल जी विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पिंकी सोनकार, मुन्ना भाई शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमारे साथ हैं, राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरसिंह गिल, दलजीत राजदीप गुरनूल गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से हमारे साथ हैं, और नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखन पहांदा पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं, अजीत भापसर जी वीरनगांव गुजरात से, प्रमीला भापसर और सनी जी के साथ जुड़े हुए हैं। हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरव, ज्योति रानी, गुरमीत हमारे साथ हैं, निसार अली नौशाद जी के साथ घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से साथ में हैं, फलिस्का पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विष्णु विशाल जी हमारे साथ हैं, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं, सुनील पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। ये संदेश समदील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति, राधे गुप्ता का है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी जी हैं, देवशंकर तामुरिया जी, देव जी कबीर, रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं, जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम जी हैं, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया पार जी हैं, गुरमीन सिंह बीता साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग दिल्ली से अशोक कुमार सहगल जुड़े हुए हैं, और सुरेश जाधव, अनीता जी हमारे साथ नेहरू चौक पैठन से जुड़े हैं, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन शरवास, फरदीन सुहान, अरजान अबान और परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ हैं, डीवी राणा जी नेहरू विहार दिल्ली से हैं, संदीप मकर, ज्योति मकर जी हमारे साथ पिंगा वाला चौक गौरख जालंधर से जुड़े हैं, पोचियाल गला कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू जी हमारे साथ हैं। ये संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, पूजा परिहार का है। पहाड़गढ़ मुल्तानी ढाना से अनिल मोहन, उषा मोहन, चिलू नायक, मधु नायक जी हमारे साथ हैं, मुकेश भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश बबलेश पवार जी का आया है और उन्होंने भी ढेर सारी जानकारी हम तक पहुंचाई है। डैनी पवार और मनीष जी इनके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ और संदेश भी हमारे पास पहुंचे हैं, हम उनको भी शामिल कर लेते हैं। हीरामणि वर्मा दत्रेंगी भाटापारा से हमारे साथ हैं और छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेरी से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम और उनके परिवार के सदस्य हैं, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप लोहगढ़ ठाकुरवाला से हैं, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित खुशी जी हमारे साथ हैं, नागरकोला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा आराध्या जी हमारे साथ हैं, सुदर्शन मुखी जी का एक बार फिर संदेश आया है। तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सफर में हम सफर बनने के लिए और आपसे इतना ही हमेशा की तरह कहेंगे कि अगर आपने अभी तक फिल्म सौदागर को मिस किया है, नहीं देखा है, तो वक्त निकालिए। बहुत खूबसूरत सी फिल्म है और भले ही उस वक्त ये फिल्म हिट नहीं रही लेकिन उसके बाद लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। दो अब हम आपकी और मेरी मुलाकात 3 बजे होगी। जी हाँ, आज दोपहर 3 बजे खूबसूरत गीतों के साथ एक महफिल सजेगी जिसमें

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को ही कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, LNS बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली दे राष्ट्रपति भवन विखे नीति आयोग दी 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग दी प्रधानगी कर रहे ने। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत बुल्गेरिया संबंधां नूं होर गतिशील ते अगावत बनाउण दा सद्दा दित्ता है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कश्मीर तों कच्छ तक देश दे सरहदी इलाकियां विच आकाशवाणी अते दूरदर्शन कवरेज नूं मजबूत करन लई विशेष प्रबंध विकसित कीते जा रहे ने। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल दी कुछ किस्मां ते एक्साइज ड्यूटी माफ कर दिती है ते 1 महीने तक चलन वाला फुटबॉल मुकाबला 2026 फीफा विश्व कप आज रात मैक्सिको सिटी दे इतिहासक एस्टाडियो एस्टेका विखे शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली दे राष्ट्रपति भवन विखे नीति आयोग दी 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग दी प्रधानगी कर रहे ने। मीटिंग विच उद्यमता नूं उत्साहित करन, हुनर वधाउण अते देश भर विच निरंतर रहण योग रोजगार दे मौके पैदा करन दे उपावां ते विचार वटांदरा कीता जा रहा है। विचार वटांदरे समूह तौर ते इक लागूकरण रोडमैप तैयार करन ते वी केंद्रित होणगे जो जवाबदेही अते मापण योग प्रभाव नूं यकीनी बनाउंदे होए शासन डिजिटल जनतक बुनियादी ढांचा अते भाईवाली समेत मुख समर्थकां नूं लाभ पहुंचाउण वाला होवे। मीटिंग विच देश भर दे मुख मंत्री ते उपराष्ट्रपाल चानमुख थम्मा दे आले दुआले जुड़े समावेशी मनुखी विकास ढांचे ते चर्चा करन लई कतर होए ने। इन्हां च बुनियादी मनुखी पूंजी अते भविख लई तैयार हुनर, उत्पादक रोजगार, उद्यमशीलता अते विकेंद्रीकृत विकास, सेहत पोषण ते तंदुरुस्ती अते सारे लई समानता ते माण शामिल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना राही संचालित केंद्र अते राज भारत की विकास यात्रा नूं तेज करन लई रल के काम कर रहे ने। उन्हां अगे कहा कि केंद्र अते राजां दे समूह यतन विकास विकसित भारत दे सांझे दृष्टिकोण नूं साकार करन विच इक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानां दी भलाई सरकार दीआं प्रमुख तरजीहां विचों इक है ते सरकार उन्हां दे जीवन नूं सुखाला बनाउण लई हर संभव यतन कर रही है।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान देश की खुराक सुरक्षा पोषण से खुशहाली की रीढ़ ने। प्रधानमंत्री ने इस गल भी जोर दिता कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना वर्गिया पहलकदमियां ना सिर्फ किसानों की आमदन की राखी कर रही ने सगो खेतीबाड़ी न भी मजबूत बना रही ने। किसान क्रेडिट कार्ड की महत्ता से जोर देंदे हुए उन्होंने दसिया कि यह कार्ड किसानों पशु पालकों से मछेरिया न खेती और होर जरूरी जरूरत लई बहुत घट ब्याज दर से कर्जे तक आसान पहुंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सरकार की बीज तो बाजार पहल फसलों लिए उचित कीमतों नूं यकीनी बनाने विच बेहद प्रभावशाली साबित हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने देश के किसानों नूं आधुनिक खेतीबाड़ी सहूलतां प्रदान करन ते लगातार जोर दिता है। श्री मोदी ने कहा कि खेतीबाड़ी सिर्फ उपजीविका का साधन नहीं सगो समाज और राष्ट्र के पोषण का मूल आधार है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के बुल्गेरिया नाल संबंध लंबे समय तो चल रहे अते इकसार ने अते हुण दोवां देशों का काम उन्हां नूं होर गतिशील अते गाह वधू संबंधां विच मुड़ नुहार देना है। उन्होंने कल बुल्गेरिया विच अपने बुल्गेरियाई हमरुतबा वेलिसलावा पेत्रोवा चामोवा नाल मुलाकात तो बाद कही। डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने चर्चा के तीन पहलू सन। पहला भारत के बुल्गेरिया विचकार दुवला सहयोग, दूजा भारत यूरोपियन यूनियन विचकार भाईवाली अते आखिर ए कि किवें मजबूत देश विश्व स्थिरता ते तरक्की लई रल के काम कर सकदे ने।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गेरिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने जोर दे के कहा कि भारत की आर्थिक सुरक्षा विघन ते हालिया अनुभवा अते दहशतगर्दी ते वध रहे खतरे बारे स्पष्ट स्थिति है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि यह जंग का युग नहीं है, टकरावा का एक एक हल गलबात कूटनीति विच है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अज राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामगढ़ विखे जयपुर के आकाशवाणी कॉम्पलैक्स च कराए गए प्रोग्राम दौरान 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस वादे के नाल राज विच FM ट्रांसमीटर की कुल गिनती 39 हो गई है। नवा ट्रांसमीटर सरहदी खेत्र 80 किलोमीटर के घेरे विच रेडियो कवरेज प्रदान करेगा, जिस नाल लोगों नूं जानकारी विदेश समगरी और मनोरंजन प्रोग्रामा की विशाल श्रेणी तक पहुंच मिलेगी। इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कश्मीर तो कच्छ तक देश के सरहदी इलाकों विच आकाशवाणी और दूरदर्शन कवरेज नूं मजबूत करने लई विशेष प्रबंध विकसित किए जा रहे ने, जिस विच नवे FM ट्रांसमीटर और प्रसारण बुनियादी ढांचा कायम किया जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि आज राजस्थान में सरहदी इलाकों नूं कवर करने लई एक वड्डी पहल शुरू हो गई है। मंत्री ने कहा कि यह योजना देश की पूरी सरहदी पट्टी विच व्यापक कवरेज प्रदान करने दी है, जो कि कश्मीर से लेकर सारे पासे फैली हुई है। श्री वैष्णव ने प्रसार भारती के समुचे ढांचे नूं बदलण दा सद्दा दिंदिआं टेक्नोलॉजी युग विच रेडियो नूं प्रसंगिक रखण लई डिजिटल फर्स्ट ते हाइपर लोकल पहुंच दी लोड़ ते जोर दिता। उन्हां स्थानक कलाकारां ते कारीगरां नूं प्रसारण प्लेटफार्मां नाल जोड़न दी महत्ता ते भी जोर दिता। श्री वैष्णव ने जयपुर विच आउण वाले AI डेटा सेंटर दा भी जिक्र कीता, इस नूं भविख दीआं टेक्नोलॉजीआं वाले इक महत्वपूर्ण कदम दस्या। इस समागम विच जयपुर दे संसद मैंबर मंजू शर्मा, प्रसार भारती दे चेयरमैन प्रसून जोशी अते आकाशवाणी दे डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन समेत होर सीनियर अधिकारियां ने शिरकत कीती। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बाद विच MNIT जयपुर दा दौरा कीता, जिथे उन्हां ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, सैमी कंडक्टरां अते क्वांटम टेक्नोलॉजीआं विच नवीआं मेकर लैबां ते सहूलतां दा उद्घाटन कीता। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 22, 25, 27 ਅਤੇ 30% ਇਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਇਥੇਨੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਲਾਊ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ MT ਸੇਟੇਬੁਲ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 3 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਦਾਨੀ ਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾਈ

जोर दिया गया है। गवर्निंग काउंसिल इस विजन को पाए तकमील तक पहुंचाने की हिकमत अमली और इसे मुल्क भर के शहरियों के लिए एक ठोस नतीजे में बदलने पर गौर करेगी। रेलवे और इत्तलात नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर के आकाशवाणी अहाते में मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामगढ़ में नसब 20 किलोवैट FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल

0: third-place teams will advance to the round of 32. This expands the knockout stage to 32 teams for the first time in tournament history. The grand final is scheduled for 19th of July, promising a thrilling conclusion to football's greatest celebration. This World Cup is also expected to be one of the most challenging in history, with teams facing demanding conditions across three countries, including long travel distances, varying climates, different altitudes and shifting time zones. Over the decades, only 8 nations have lifted the FIFA World Cup trophy: Brazil, Italy, Germany, Spain, Argentina, England, France and Uruguay, the inaugural champions. Among the most unfortunate sides in World Cup history remain the Netherlands, who have reached 3 finals but are yet to win the title despite producing generations of world-class talent. From history to high stakes, from legends to new challengers, the stage is set for football's ultimate battle. Shagun Chopra from Sportsdesk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and state key to realising Viksit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First made-in-India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद

0: मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने के

0: घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमरीका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
1: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रिस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि

की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बड़े तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका एक बार फिर से उमंग कार्यक्रम में मैं विमलेश हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार श्रोताओं,
3: और अजीत का भी आप सबको नमस्कार। ऐसी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे और बाधाएं क्यों ना हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए।
2: ये विचार हमें भेजा था ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई और सूरज कुमार ठाकसे जी ने। आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी का, और आप लिखते हैं,
2: बहादुर महान स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश गोंडवाना की रानी, रानी दुर्गावती पर बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेरणाप्रद जानकारी सुनी। हमारे बच्चे गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा पुनः सुनना चाहते हैं। इस गीत को वो बहुत पसंद करते हैं, अतः आप उनकी पसंद अवश्य पूरी करेंगे।
3: धन्यवाद आपके संदेश के लिए। तो लीजिए आपकी फरमाइश।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
3: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
3: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
3: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
3: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
3: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
3: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
3: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
3: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
3: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
2: जी
3: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
2: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
3: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई

0: दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था। जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
1: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियां उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
3: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद

समाधि ले ली और उसके बाद माता जी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माता जी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा

0: शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: रामकृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
0: जी,
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
0: जी हाँ,
1: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
0: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
1: असल बात तो यह है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
0: जी,
1: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
0: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
1: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
0: जी,
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
0: जी हाँ,
1: उनके

0: शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे, यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी

0: पांडिचेरी के आश्रम में भी श्री अरविंद के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
3: घर के पास लगा था मेला,
4: भाई घर के पास लगा था मेला,
3: उसमें आया चाट का

0: हो गई इस गीत में। अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।
1: De resumentes en si y artigra li kemal la kemanet kan sponsor program planin chigut pin mang mirim vevika du akashvani kargilin voxpo nimi baja sum sonsuk kasat alta vitori baja bi sharpa akashvani urdu service gna program un rilevet rilevla gherba

5 मिनट पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर फिल्मी नफ़मों का प्रोग्राम आप सुनेंगे मेरी पसंद।

सखा में सुनिए, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के नजरिए को हकीकत में बदलने में अहम साबित होंगी। इत्तला और नशियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत भारत के सरहदी खित्तों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की कवरेज को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। जनाब वैष्णव ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। मरकज ने इथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल की कुछ अकसाम पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है। पहले मेड इन इंडिया एयरबस C-295 तैयारे ने वडोदरा में अपनी पहली परवाज मुकम्मल की। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुरमुज बंद करने का ऐलान किया है और आज रात मेक्सिको में शुरू होने वाली एक महीना तवील फुटबॉल के दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा आलमी कप के लिए दुनिया भर के फुटबॉल मद्दाह तैयार हैं। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम की सूरतहाल के बावजूद भारत इदमात और पुख्ता अज़्म के साथ तरक्की की राह पर मुसलसल आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अब जबकि मुल्क विकसित भारत के विजन के हुसूल की जानिब गामजन है, मरकज और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तआवुन और मुज़ाकरात रियासतों के दरमियान बातचीत और राब्ते के उसूल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इश्तराक के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर अहम किरदार अदा कर सकता है, जहां रियासतें विकसित भारत के विजन के लिए तबादले ख्याल और एक साथ मिलकर काम कर सकें। वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि मियारी तालीम के जरिए मुल्क के नौजवानों के लिए सही इको निज़ाम कायम किया जाना और रोजगार के मौके पैदा किया जाना आला तरजीह होनी चाहिए। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि बाख्तियार नौजवान विकसित भारत के सफर को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने कई मुल्कों के साथ आजाद तजारती समझौते किए हैं ताकि तरक्की और बरामदात के लिए नए मौके पैदा किए जा सकें। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये समझौते MSMEs के लिए भी एक अहम मौका फराहम करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसन्निफ और कंसल्टेंसी फर्म कॉन्सिलेज इंडिया के बानी और मैनेजिंग पार्टनर्स का मजमून शेयर किया है। ये मजमून वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुद्दत कार का अहाता करता है और इस बात को उजागर करता है कि उन्होंने मुश्किल रास्ते को चुना और हुक्मरानी के तरीके कार के जरिए बदलाव लाते हुए वकार और खिदमत की फराहमी को अवामी तहरीक बना दिया। ये मजमून इस बात को भी उजागर करता है कि जनाब मोदी ज्यादा बाअसर वज़ीर आज़म साबित हुए हैं और वो बदलाव लाने वाले शख्स बने जिसकी भारत को सख्त जरूरत थी। भूटान के वज़ीर आज़म ने आज कौमी रोजनामे में एक मजमून लिखा है जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर फराइज अंजाम देने पर मुबारकबाद दी गई है। अपने मजमून में भूटान के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म मोदी को काबिल एतबार दोस्त, बड़ा भाई और रहबर करार दिया। उन्होंने 26 मई 2014 को जनाब मोदी की रहबरदारी की तकरीब के दौरान उनसे हुई मुलाकात को याद किया और वज़ीर आज़म के पहले गैर मुल्की दौरे के लिए भारत की जानिब से भूटान को चुने जाने की अहमियत पर रोशनी डाली।

0: सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि सबका टूर्नामेंट्स में 32 टीमें थी। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के नजरिए को हकीकत में बदलने में अहम साबित होंगी। इत्तला-ओ- नशरियात के वजीर अश्वनी वैशम ने कहा है कि हुकूमत भारत के सरहदी खित्तों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कवरेज को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। जनाब वैष्णव ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। मरकज ने इथेनॉल की आमदिश वाले पेट्रोल की कुछ अकसाम पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है। और पहले मेड इन इंडिया एयरबस C295 तैयारे ने वडोदरा में अपनी पहली परवाज मुकम्मल की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्री इंग्लिश पर। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम का आगाज एक गजल के साथ, कलाम हसन कमाल का, मौसीकी रवि की और आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की। फिल्म दिल्ली।

آخری پیشکش اشرف حوصلے کی آواز میں فلم

इस गजल के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अंदाजे नजर। इस प्रोग्राम के तहत एक मुबाहिसा सुनिए, मौजू है फासलाती निजाम तालीम और

0: उसकी ये है कि एनईपी के थ्रू और ये जो हमारे यहाँ सीयूईटी वाला सिस्टम है, इसमें कोशिश ये की गई है हुकूमत हिंद की जानिब से कि वो तलबा भी अच्छे और बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस के अंदर दाखिला ले सके जो समाज की एक मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए थे, और दूर दराज इलाकों में रहने वाले, रूरल एरियाज में रहने वाले बच्चे जो कहीं ना कहीं उस तरह की सहूलियात को हासिल नहीं कर पा रहे थे जिसको शहर में रहने वाले बच्चे या प्राइवेट स्कूलिंग करने वाले बच्चे अच्छे तरीके से हासिल कर पा रहे थे, तो उन लोगों के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो गई थी। उसी को दूर करने के लिए एनईपी में इस तरह की चीजों को पेश किया गया और उन जरूरतों को समझा गया, और उसी की बिना पर सीयूईटी जैसी एक एग्जामिनेशन प्रणाली या सिस्टम को लाया गया है, और उससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और मेरे पास तो दोनों ही तरह के बच्चे आते हैं, और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मेरे यहाँ ना सिर्फ ये दोनों तरह के बच्चे आते हैं जो रिवायती तरीके तदरीस से कामयाब होने के बाद मेरे पास आते हैं या डिस्टेंस सिस्टम से आते हैं फासलाती निज़ाम तालीम को हासिल करने, तो बल्कि मेरे यहाँ से पढ़ने के बाद भी जाते हैं इस तरह के कोर्सेज करने, प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए, और वो मुझसे उस बारे में जानना भी चाहते हैं। और मेरा ताल्लुक दोनों ही तरह के सिस्टम से रहा है, मेरी पीएचडी डिस्टेंस एजुकेशन में रही है और मैं उर्दू पढ़ाता हूँ।
1: आपने बहुत काम किया हमें मालूम है, एनआईएस में, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में ट्रांसलेशन का भी काम किया है, तो आपने ये फर्क देखा कि आपके यहाँ दोनों तरह के तालिबे मारे। जैसा मैंने काम किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में, हम ये महसूस करते हैं कि हमारे मुल्क में ये बेहतरीन निज़ाम हमारी हुकूमत ने कायम किया, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए तोहफा है। पूरी दुनिया में लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग है जहाँ लाखों बच्चे तालीम हासिल करते हैं। दरअसल किसी भी तालिब इल्म की किसी नामुसाद हालात के बिना पे तालीम छूट गई और वो किसी काम में लग गया, किसी घर में उसके वालिद का इंतकाल हो गया, या किसी को अचानक नौकरी करनी पड़ी, या फिर ऐसे तालिब इल्म जो रेगुलर सिस्टम में नहीं जा सकते। रीजन ये है कि रेगुलर सिस्टम में एक वक्त मुकर्रा पर दाखिला होता है, वक्त मुकर्रा पर ही इम्तहान होता है। और फाजलाती निज़ाम में तालीम में एक अच्छी बात यह है कि आपका दाखला जैसे 10वीं 12वीं में आप लें तो 5 साल के लिए हो जाता है, ऐसी तरीके से बीए में 8 साल के लिए हो जाता है, और आप साल में 2 बार इम्तहान होता है, आप अपनी सहूलत के हिसाब से इम्तहान दे सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर लियाकत अली साहब, ये तमाम चीजें आप भी महसूस करते हैं कि जो फासलाती निज़ाम तालीम के जो तालिब इल्म हैं वो इस वजह से आते हैं, या फिर एक ग्रुप ऐसा भी है जो ड्रॉप आउट है, जो हमारे रेगुलर सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाता है और फिर उधर आता है, क्या महसूस कर?
2: जाहिर सी बात है, ये खला पैदा हो जाती है, वो तबका जो तालीम नहीं हासिल कर सकता। अब देखिए ना, इसमें आपने खुद ही जिक्र किया कि रवायती तालीम में क्या है कि एक एज ग्रुप है, उस एज तक वो दाखिला ले सकता है, लेकिन फासलाती निज़ामी तालीम में क्या है कि इसमें किसी भी उम्र का कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, कोई भी फर्द जो है इससे मुस्तफीद हो सकता है, तालीम हासिल कर सकता है, और किसी भी इलाके से, किसी भी कोने से, दून के किसी भी कोने से वो इससे इस्तेफादा कर सकता है। तो इसमें ये एज ग्रुप जो है ये वेरी खत्म हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस हैं जो जिस पर हम आगे चल के जिक्र करेंगे, बात करेंगे उसको भी, किस तरह से तरसील का जो जरिया है। अब फासलाती निज़ाम तालीम के तरसील का जो एक जरिया है, वो आप देख रहे हैं कि आज जिस माध्यम से या जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठ करके गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो सबसे अहम रोल उसने अदा किया है रेडियो ने। रेडियो ही के जरिए आए तो फासलाती निज़ाम तालीम जो है वो कामयाब हुई है, और यानी कि लाजिम और मलजूम है एक दूसरे के साथ जी। ना अब रेडियो का सहारा लिए बिना तफसील जो है हम फासलाती निज़ाम की नहीं कर सकते हैं। रेडियो का अहम किरदार इसमें रहा है। अब रेडियो का आप देखें कि रेडियो के जो मकासद हैं, अब उसमें इतलात और तालीम और तफसील, देखिए कितना हसीन इंतजाम है,
1: बहुत बढ़िया।
2: और इस तालीम को किस तरह से लोगों तक पहुंचाना, और रेडियो की अब आज के वक्त में, आज इस अहद में हम बात कर रहे हैं, ये एक डिजिटलाइज, यानी कि हम इसको आलमी गांव कह लें या फिर इसको दूसरे अल्फाज में हम कह लें कि ये एक मीडिया कल्चर में हम जी रहे हैं। अब एआई का जमाना है, सब चीजें हैं, लेकिन रेडियो इस बात के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि 100 साल के आसपास जो आपने सफर इसने तय किया है, वो कोई भी एजाद जो है वो आपने तशख्स इस तरह से बरकरार रखा उसने कि आज भी उसकी मानवियत और उसकी अफादियत उसी तरह से है जिसके जरिए से हम फासलाती निज़ाम तालीम की तफसील कर सकते हैं।
1: और दिलचस्प बात यह है

0: सारी यूनिवर्सिटीज जो है उनके अपने अपने चैनल हैं, उनके अपने अपने प्लेटफॉर्म है, जैसे आप ज्ञानवाणी का जिक्र आप कर रहे हैं,
1: कम्युनिटी रेडियो बहुत चल रहे हैं हर यूनिवर्सिटी के,
0: हर यूनिवर्सिटी का जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का आप देखेंगे कि ज्ञानवाणी एक चैनल है,
1: बहुत जमाने से काम,
0: 7 से 8 घंटे तक जो है तालीम, जो हमारा सेल्फ लर्निंग मटेरियल है उसको आसान सहल जबान में, रवा जबान में तालिबिल्म को मुखातिब करके वो एक लेक्चर हम उस पर प्ले करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, उससे बहुत से तलबा मुस्तफिद होते हैं।
1: इसी तरीके से NIOS में मुफ्त विद्यावाणी रेडियो चैनल है जिससे लाखों की तादाद में बच्चे मुस्तफिद हो रहे हैं। जी
0: बिल्कुल।
1: तो अजगर अली साहब, आपने अभी एक पॉइंट की तरफ इशारा किया, क्योंकि उसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है कि फासलाती निजाम तालीम की वो अहमियत नहीं है जो एक रेगुलर सिस्टम की, और ये हमने महसूस भी किया है, जहां भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या इस सर्टिफिकेट की वैल्यू है। मैं बताना चाहता हूँ अपने सामीन को, तालिबिलों को, ठीक उसी तरह जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सर्टिफिकेट की वैल्यू, उसी तरह से NIOS की भी सर्टिफिकेट की वही वैल्यू है जो CBSE की है, और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की भी और मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी की भी वही वैल्यू है जो दूसरे यूनिवर्सिटीज और बोर्ड की वैल्यू है। इसमें किसी किस्म की कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। उसके बावजूद भी अगर आपके साथ कोई ज्यादती कहीं करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, वहाँ ग्रीवेंसेस सेल बने हुए, शिकायत के ऑफिस हैं हमारे यहाँ भी, इंदिरा गांधी में भी होंगे, हर जगह हैं, तो आप बात कर सकते हैं। देखिए, किसी इस बुनियाद पर कि हम आपको नहीं लेंगे, आप NIOS से आए या IGNOU से आए हैं, तो ऐसा नहीं है। नदीम साहब, जो अभी लियाकत अली साहब ने कहा कि एक रेगुलर सिस्टम और फासलाती निजाम तालीम में जो मुख्तलिफ तरह के ड्रॉप आउट बच्चे जो अभी हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं, इसमें भी फासलाती निजाम तालीम बहुत मदद करता है। तो जो ड्रॉप आउट हैं आपके, आप महसूस करते हैं, जैसे आपने कहा हमारे यहाँ से भी, क्या ऐसे भी तालिबे इल्म हैं जो मैं बीच में छोड़ के ही चले जाते हैं?
2: देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी आबादी हमारे यहाँ है, और फासलाती निजाम तालीम का तो मकसद ही यह है कि किसी भी तरह या जिस भी तरह से तालीम दी जाए वो दे दी जाए और लोगों को मिल जाए। हम अगर माजी में जाते हैं हिंदुस्तान से इतर अलग, तो हम ये देखेंगे कि रशिया के अंदर लिटरेसी मिशन चला, तो फासलाती निजाम तालीम के तहत ही चला, और ये रेडियो ने बहुत बड़ा किरदार उसके अंदर अदा किया है। हम क्यूबा की मिसाल ले सकते हैं, वहाँ पर सोशल एजुकेशन दी गई, खासतौर पर बालिग लोगों को, उसके लिए भी रेडियो का ही सहारा लिया गया। और ड्रॉप आउट की जहाँ तक बात है, तो हमारे पास आज़ादी का इतना लंबा वक्ता गुजर जाने के बावजूद भी अभी भी मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरी तरह से हम हर बच्चे को, सर्व शिक्षा अभियान हमने चलाया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भी चला दिया बालिग लोगों के लिए, एडल्ट लोगों के लिए चलाया, सोशल अवेयरनेस के लिए, और लोग कुछ पढ़ लिख लें, बावजूद उसके अभी भी हम उस तरह की तालीम हर किसी को नहीं दे सकते जिस तरह की तालीम दरकार है हिंदुस्तान के हर बच्चे। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो फासलाती निजाम तालीम से जुड़े, और ये हमारी मॉरल ड्यूटी है बीइंग ए टीचर कि हम लोग अगर किसी मजबूरी के तहत बच्चा हमारे पास नहीं पढ़ पा रहा है जुड़कर हमसे, यानी अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पा रहा है, घर की परेशानी है, उसकी दीगर परेशानियां हैं, खासतौर पर लड़कियों के साथ प्रॉब्लम है, और वो दही इलाकों की लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, तो हम कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करें, तरगीब दें कि फासलाती निजाम तालीम की जानिब आए, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इससे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। ड्रॉप आउट बच्चों के लिए तो ये एक, मैं बोलूं अगर हिंदी में, तो वरदान है,
1: नेमत है,
2: नेमत है, एक बड़ी नेमत है।
1: डॉक्टर अजगली साहब, आप तो ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे दोनों तरह की सिस्टम है, फासलाती निजाम तालीम आप देख रहे हैं और रेगुलर सिस्टम, तो आप क्या इसमें महसूस करते हैं? इधर से उधर, उधर से इधर लोग आते हैं, या आप किसी को मशवरा देते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से आ जाइए?
3: इस तरह का निजाम है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि जो है ना हम रेगुलर सिस्टम से जुड़े, तो इस तरह का प्रावधान जो है ना, इस तरह का निजाम है। रहा सवाल कि, और ये पहले से भी होता रहा और अभी भी जो है ना, ये फर्स्ट ईयर में जो है ना बच्चे जो है ना स्विच ओवर कर सकते हैं अगर जगह खाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो दीगर जो फासलाती निजाम तालीम का जो इदारा है, उसमें एक फर्क आप ये महसूस करेंगे, जैसे एज के हवाले से अगर आप देखेंगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं वो ज्यादातर जो है सब फ्रेशर है, यंग बच्चे मिले अक्रॉस द कोर्स, मोस्ट ऑफ द बच्चे वो है जो, जिनको क्या कहते हैं कि

बड़ी खुशखबरी की बात है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने स्वयं पे आप देखिए कि कम से कम 7 या 8 कोर्सेज हमारे उर्दू के चल रहे हैं। और मैं आपको ये भी जिक्र करना चाहूंगा कि देखिए कि हमारे यहाँ यूजी लेवल की कम से कम 4 या 5 डिग्रियां हैं उर्दू।

0: फ्यूचर उन लोगों का मुस्तकबिल जो है वो बना सकते हैं, रोशन कर सकते हैं। तो उसमें हमने क्या किया है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उससे हमने कुछ एमओयू किया है, उनसे हमने कुछ कोर्सेज लिए हैं। उसमें हम उर्दू के तलबा को इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप भी देते हैं, बच्चे उसे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं।
1: एनआईएस में उर्दू में कोर्सेज बहुत सारे हैं जो उर्दू मीडियम में हैं, वोकेशनल कोर्सेज। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू की क्या सूरत हाल है?
2: मेरे यहाँ जो है
1: तालीम के
2: बी ए प्रोग्राम है और ऑनर्स वगैरह नहीं है, कुछ कोर्सेज हम लोग प्लान कर रहे हैं। अभी मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अप्लाइड उर्दू जो भारत ने लॉन्च किया है, तो उस तरह से कोशिश की जाएगी कि जो है ना कुछ इस तरह के कोर्सेज जो है शुरू किए जाए। लेकिन अभी अभी जो मामला है हमारे यहाँ रवायती कोर्सेज है। दूसरी चीज मैं अभी एक बात कहना चाहता था कि जैसे उर्दू की बात आती है ना तो आमतौर पर बच्चे जो है ना जबान समझ लेते हैं और थोड़ा जो है ना उसको एक कह लीजिए कि टेकन फॉर ग्रांटेड, अच्छा हमारी मादरी जबान है हम उसे कर लेंगे। लेकिन जहाँ ऑनर्स और ग्रेजुएशन और इसकी बात आती है तो फिर मामला बिल्कुल बरक्स हो जाता है। वहाँ पे शायरी पढ़नी है, वहाँ पे सारे जो भी अदब का जो मतलब नॉवेल पढ़ने हैं, मुख्तसर अफसाने पढ़ने हैं, कसीदे पढ़ने हैं, तो जबान से बिल्कुल इसका मामला जो है ना अलग हो जाता है। और दूसरी चीज जो मैंने एक चीज और महसूस किया है कि जो हमारे स्कूल्स हैं जैसे एनआईएस है या और भी जो रेगुलर स्कूल्स हैं वहाँ वहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ना हमें उनसे कनेक्ट करके थोड़ा सा जो है ना उनसे इंटरेक्ट करके उनसे जो है ना कि थोड़ा सा जो है ना कुछ कुछ चीजों पे तवज्जो दी जाए कि बच्चों के अंदर कम से कम जो है ना वो लिखने वाली जो तहरीरी सलाहियत हो वो पैदा हो जाए। उसकी बड़ी कमी महसूस करते हैं डॉक्टर साहब। आमतौर पर जो है ना आपने इवेल्युएशन किया होगा जो है आंसर शीट वगैरह जो है ना तो उसमें बहुत ही खराब सूरत हाल है। एक चीज और मैं ऐड करना चाह रहा हूँ सर कि अब जैसे रहा सवाल जैसे बुक के हिसाब से किताब के हवाले से उर्दू एज ए मीडियम और उर्दू एज ए डिसिप्लिन, तो उर्दू एज ए डिसिप्लिन में तो क्या करते हैं अगर एज ए डिसिप्लिन हम अगर उसको एडॉप्ट करते हैं अख्तियार करते हैं तो वहाँ पे तो कम ओवेस्ट मटेरियल जो मवाद है स्टडी मटेरियल वगैरह है वो सब काफी है और उसमें भी कमी है। लेकिन जहाँ बात आती है उर्दू एज ए मीडियम दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ना जैसे पॉलिटिकल साइंस हो हिस्ट्री हो या और दीगर जो सब्जेक्ट है वहाँ पे कमी महसूस होती है। हमारे बच्चों को उतनी आसानी नहीं होती है, सोशल मीडिया से भी उतना हेल्प नहीं मिल पाता है जितने और दीगर सब्जेक्ट में बच्चे करते हैं, मतलब हेल्प ले लेते हैं सोशल मीडिया से या और दीगर इदारे से या वेबसाइट से या तो वहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ना तवज्जो देने की जरूरत है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं कि जो फासिलाती निज़ाम तालीम है उसमें जो टीचर की ट्रेनिंग है जो फासिलाती निज़ाम तालीम से जुड़े हुए हैं उनकी जो ट्रेनिंग है एक स्पेशलाइज नहीं पे होनी चाहिए। वहाँ पे जो है ना उर्दू में उस तरह से जो है ना एक बेहतर निज़ाम नहीं है। आपने जिक्र किया है कि मौलाना आजाद इस पे अच्छा खासा काम कर रहा है,
1: वहाँ पर उर्दू मीडियम में काम हो रहा है।
2: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: तो हमारा जो है बहुत करीब आ गया प्रोग्राम खत्म करने का, एक बात कहकर हम प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म करेंगे कि एक तो ये है कि जो उसका निसाब है निज़ाम तालीम का चाहे एनआईएस का हो या इंदिरा गांधी का हो या मानू का हो इनका खुद सेल्फ लर्निंग मटेरियल है। तालिब इल्म को टीचर की यहाँ जरूरत ही नहीं है, बहुत आसानी से न सिर्फ जबान की पढ़ सकते हैं बल्कि जो दूसरे मजामीन जिनकी मीडियम की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो भी बेहतरीन है। फिर भी इसके अलावा पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम यानी जाती राबता प्रोग्राम छुट्टी के दिनों में तालिब इल्मों के लिए होते हैं, जैसा अभी हमने जिक्र किया रेडियो के जरिए होते हैं, टेलीविजन के जरिए होते हैं जाती राबता प्रोग्राम और उनके स्टडी सेंटर पर भी होते हैं। खैर आप लोग यहाँ तशरीफ लाए डॉक्टर लियाकत अली साहब, डॉक्टर अजहर अली साहब, डॉक्टर नदीम अहमद और मैं आपका यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छे मौजू पे हमने गुफ्तगू की, यकीनन हमारे सामीन को इससे बहुत मुस्तफीद होंगे और इससे फायदा उठाएंगे। आज का ये प्रोग्राम अब हम यही खत्म करते हैं, इजाजत दें, खुदा हाफिज।
3: अंदाज़े नज़र इस प्रोग्राम के तहत अभी आप एक मुज़ाकरा सुन रहे थे, मौजू था फासलाती निज़ाम तालीम और उर्दू। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव से गुजारे खत्ते के लोहर्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशियात जारी है।

0: ci sono i miei filmi.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बार कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, उनको ये सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से, जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की, जहां बाज योगदान, उस कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल। हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है।

परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है, ये एक पोरस बॉर्डर है और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी

0: मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूं कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहां थी आपके गांव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
1: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था
0: जी, जी।
1: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी। बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया
0: जी।
1: 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूं तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था
0: जी, जी।
1: तब हम आईटीबीपी को देखते थे, हमें सीआरपीएफ की जानकारी थी, बीएसएफ की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे। पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा, तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
0: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
1: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं। खासतौर पे भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं, और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम है ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
0: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का
1: जी,
0: इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी।
1: बिल्कुल।
0: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
1: बिल्कुल।
0: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकते हैं इन देश के ना हो किसी और देश के हो, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
1: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से, दूसरा अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम सीसीटीवी को यूज कर रहे हैं, हम कैमरा जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है
0: जी।
1: हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जवान वहां पे खड़ा है वो उस चीज में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
0: राइट देन, तो आप अभी सीटीसी में हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहां पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
1: बिल्कुल।
0: और किस तरह की ट्रेनिंग आप?
1: बेसिकली जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं, और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं
0: जी। जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
1: बिल्कुल, ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स

0: का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था
1: जी।
0: तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुंचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव।
1: और आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है आप CTC में, ये कितने समय से है?
0: मेरे को अभी एक साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर। ही इज सेकंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक क्योंकि ये प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
0: ऐ मेरे वतन के लोगों।
1: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है?
0: बहुत प्रिय है।
1: और कोई खास वजह?
0: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिएबली रहता ही था।
1: जी जी,
0: तो दिल को छूता है ये।
1: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न्ड, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर।
2: Yeah!

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहां तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहां सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहां पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई, बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहां पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई। और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से, तो वहां पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहां जवानों से मिला तो एक

0: कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा,
1: जी
0: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना, और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने, और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ, और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स
1: जी
0: हैं, जो
1: जी
0: इस तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है। तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला, और किस तरीके से रोकना है अपने
1: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है,
0: जी
1: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो
0: बिल्कुल
1: यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है,
0: जी
1: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
0: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्यर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया, और हम लोगों ने उस जिस जिले में हम लोगों को दिया गया था उस जिले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
1: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहेबगंज, जामताड़ा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब हमारी मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है, और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे, तो इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई, और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं, और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
1: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा, ये नक्सलवाद वहां पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा, बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से, बातों का जो सिलसिला है उसे रखकर कोई चीज सॉल्व कर सकें?
0: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इन्फॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत
1: ये
0: कार्य,
1: सब एसएसबी कर रही है?
0: बिल्कुल एसएसबी कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लंबिंग के कोर्स करवाए,

0: उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा। तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है।
0: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ, वहां के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीजों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं। उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नजदीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहां पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
1: जी,
0: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे कि आप बनाइए। जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे, विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा। ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
1: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आइडिया, क्यों वो विकास नहीं चाहते?
0: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज है। 90 का दशक है, वहां पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
1: पनिशमेंट।
0: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूं संथाल परगना में, बहुत सीधे साधे लोग हैं। जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुंचने नहीं देते थे, पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया। और यही इसी से नक्सलवाद वहां पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज के उसमें बैरियर लगा दिया, आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे। तो डर भी एक चीज थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद की तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
1: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूंगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
0: हाँ, मैं जरूर बता चाहूँ, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशन कर पाए। नाम लेना चाहूंगा मैं उनका, हमारे आईजी सर थे श्री संजय कुमार, हमारे डीआईजी सर श्री सुमित जोशी, हमारे कमांडेंट सर परिचित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री वाई एस रमेश, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफ्स थे इमानुल बास्की और आरसी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई, और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से अपने ही लोगों से एक स्मॉल एक्शन टीम करके बनाई। और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब। तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो

0: उसके टैक्टिकल वेपन्स एक, फिर उसके बाद आया हमारा इंट जो टैक्टिकल इंट थी। तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इंफॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी उससे हमें बहुत फायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है पर उससे पहले की जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे, हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की
1: जी।
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए।
1: ओके।
0: और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है ठीक है गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी। शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो झारखंड जैसे एरिया में, थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो। तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फेक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी?
0: बिल्कुल। आतंक का पर्याय थे ये नक्सली, ये नक्सलियों लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47 इंसास इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे जबरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे। तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के और वो बैरियर तोड़ दिया, एसएसबी ने वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
0: बिल्कुल। ये हमारी जो टीम थी इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी
1: जी,
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी इसके बाद जो है उनका भी कार्य शैली में बड़ा परिवर्तन हुआ और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है तो एक कंपटीशन है और एक पॉजिटिव कंपटीशन है। और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहां पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। और
1: वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम करें आगे जाके।
0: बिल्कुल।
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी सीटीजी में जो ट्रेनिंग आप।
0: बिल्कुल। हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया, हमारे उसमें सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
1: जी।
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा।
1: तो मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो एसएसबी में, क्या खींच कर लाया आपको एसएस, कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं आपके अपने अंदाज में?
0: बिल्कुल। हम पूछते हैं उसके कहां से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है
1: जी।
0: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की जरूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग्स को।
1: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकंड इन कमांड हैं एसएसबी के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने?
0: बिल्कुल।
1: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
0: बिल्कुल। मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
1: जी,
0: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में।

0: पिथौरागढ़ में अरेंज नहीं होती
1: उनकी. बिल्कुल.
0: हमारे दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन. आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था. तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं शादी से?
1: बिल्कुल, हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं
0: जी,
1: तो
0: जी.
1: उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है. तो जब पाता, लड़की का पाता आता है, मतलब पतरा जो आप वो कहिए, तो वो आता है तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और वो मिल जाता है तो उसके बाद शादी फिक्स हो जाती है. तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है.
0: बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो.
1: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा. हम मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा, अलग अलग जगह ड्यूटीज की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही.
0: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियां भी हैं, तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है
1: जी.
0: मॉडर्न पढ़ाई हो रही है, गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं. तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का? या
1: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती है. बहुत छोटी है तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
0: जी,
1: वो
0: जी.
1: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है, बट मैंने जरूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं. तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल हो जाए.
0: आपकी SSB में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है.
1: बिल्कुल,
0: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स.
1: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं. और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है. और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम है हर चीज के लिए. वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं. उनके सोचना समझना, उनका तरीका बहुत अलग रहता है
0: जी. ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा
1: हूँ,
0: पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं. संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल.

0: प्रदेश टूसूल जज आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुंह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी। तो एक जनाब है दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड,
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहां पे पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी।
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: राइट, मैंने मशीन खोली है तो देखिए, आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होके हम लिखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूं, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज ऑन एआईआर ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहां पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और है सल्यूट सर,

0: कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं सीटीसी एसएसबी श्रीनगर से हूँ सर, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
1: थैंक यू।
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं। महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन अच्छा। लिख रहे हैं, आप पहचान गए होंगे
1: जी।
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद, विजय कुमार जी हैं वहां से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर, यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों?
1: धन्यवाद है यश का।
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहा है
1: जी।
0: अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज ऑन AIR के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूं ललित सर का, सही कह रहे हैं सर
1: जी।
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी, जय हिंद बाबूलाल।
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहां पे आया है एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है। एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन विमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे।
1: बिल्कुल,
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहां पे देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही मैंने जो देखा है कि दोनों ही चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सीलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं।
0: ओके,
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है, अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है।
0: ओके,
1: बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को। और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं।
0: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है,
0: बट सुझाव अच्छा है,
1: बहुत अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा, और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फर्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है जो पुलिस की टैक्टिस है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है, उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है, और हमारा जो पाठ्यक्रम है हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उन्हें JNK हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
0: ऑलराइट, TPT सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा है।
1: जी मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
0: ओके
1: जी,
0: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है।
1: बिल्कुल।
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी।
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस

0: एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं धर्म भाटिया रोहतक से. मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे कि अब आगे की जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में. मैं ये नहीं कह रहा कि SSP सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है. और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग. और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके, उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पे आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख पाएंगे.
0: तो यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, नहीं कि कम्प्लीटली. लोगों को लगता है कि यार आपने कम्प्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, AI का जमाना आ गया. आप लोग AI को अडॉप्ट कर रहे हैं SSB में?
1: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट यह है कि AI के अपने भी कौन से हैं उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही.
0: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नजर तो जरूर रखते होंगे.
1: बिल्कुल नजर रखते होंगे और उन पे हम भी नजर रखते हैं. नजर दोनों ही तरफ से रखी जा रही है और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नजर रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी
0: तो
1: हुई है.
0: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
1: हम भी तैयार हैं. बिल्कुल
0: चौकन्ने हैं.
1: बिल्कुल.
0: CTC श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है. रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट भमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं. तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है.
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद.
0: महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहां आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं. एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं. मेरी तरफ से सर को सुनाओ, अच्छा लगेगा.
1: धन्यवाद.
0: ऑल राइट. 29th SID से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से. हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम जरूर लिखें. अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं, हम सबकी तरफ से हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें. समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं. और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी

0: सेकंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते जो ये वाक्य, इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें। सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय।
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूं, कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहां से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है, महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश। लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ।
0: अच्छा।
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था, और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहां जा रहा हूँ जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ।
0: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं?
1: नहीं, बस यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है।
0: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर गुनगुना सकते हैं
1: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
0: राइट देन, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ। आप हैं तो हम हैं, 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मीडियम वेव कडी आकाशवाणी करगिल इनका सता आकाशवाणी करगिल के न दिरिंग प्रचुक पेपी प्रोग्राम ने सिर पंगन मजत दिरिंग छनी बजर गुने मिनट सुमजी का प्रोग्राम यन मजत फोन यन प्रोग्राम हेलो सुत का फरमाइश रदेलुक सिफिया खसको गन यन मजत दरे फितोगी बजा गन मिनट सुमजी का बजा गन मिनट सुमचो सुगी का सख मसुत कर यन ती खिदमत ला फ्रचुक जजिन बजे त्रुई का आकाशवाणी दिल्ली के न हिंदी न अंग्रेजी खबर उन रिले बचा जिन प्रोग्राम यन मजद रदलुक सिफिया शामी बजा त्रुक न मिनट सुमचुई का शामी बजा हरदुनी का प्रोग्राम यन मजद अच्छे नमोनिफिया

0: ग्रेंटेस पर की खबरों ला यानी चिकित बिन मीडियम वेवी के द्वारा आकाशवाणी कारगिलिन कसता हर दिलुक सिफ़िया खस कोई गंगन मज़ाद
1: अस्सलाम वालेकुम जुले दरिन बिर दिलुक से प्रोग्राम पे हम मतस एनीमिया जरखनी जरमो यानी कि एनीमिया मैंने खा गिनाती

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मीडियम वेविकांच आकाशवाणी करगिल के नेता नगर पंचायत कसता मसूद खरी इंत खिदमत लफ चुके सबत संग स्नलिंगन मजद غلام قادر زکیس کتیانوک دیر سخمه استود که بلا.

0: विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमरीकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटीएस टिबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: रंगी बिजनेस उन लस्के तंग मिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोलन उन लोकल इन या फायुली थोकी काइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उन सफ़िले पीस कप्स मांगमो दरने यंतेस नंग या दफ्तर या हटी का जुक से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंगिन से युत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
6: 8700014242। सुनो ना,
5: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है, हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
6: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
7: Mijdim Vivika, Manchasaka Ashwani Kargilikan and Tanagarinchut, Kasata, Sahmastut Karing and Mazat, Sabatung Snelling and Mazat, Kacho, Asrar Ali, Skatianuk, the Sahmastut Kaula.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ऑन स्पॉट, फॉर एग्जाम्पल ऑन स्पॉट दे दीछे थल, कोई इमरजेंसी आ जाती है दे टाइम पे का कोला से दे लस पोबाइना दे चुक्स लस गाओ ऑन स्पॉट इमरजेंसी ची का कोला से खुआ बाइन गया लम ची का एक्सीडेंट चिक सू यंग दे कर दो एक छोड़ दो एक चुक्सिक लेन मागोस या मतलब ऐसे कोई भी टास्क या लश खुरा इन नाता जगतान जग लस बात हा दे लस गुन नाता हिश माउमा मस्जिक पसे दे लस पोबाइन खान पोला नाते हेल्दी जर बाइन चिन फिट जे बाइन चिन ह्यूमन की नाते फिजिकली चिचिक मोटे के उत्पन्न को हेल्दी दुख पहला चिचिक ठामे के उत्पन्न को माने पतले दुहला और तो नाते जर बाइन चिन सो पसा चमशिक नाते लस बना एक्सरसाइज बना वॉक बना मतलब न्यालिन लंग से मधुपा जगलास बिना ठीक ठाक एक्सरसाइज छना का तो मतलब हेल्दी ना फिजिकली हेल्दी फिजिकली थोंजो हेल्दी प्लस मतलब मेंटली अं डेवलपमेंट देने का नहीं चाहिए देने जरूर में दो मतलब जो इंग्लिश यंग कहावत चूत की है हेल्दी बॉडी रिजाइड्स इन हेल्दी माइंड जबते हेल्दी बॉडी जब तक उतना का तो खे दे का ना सोच से ना खे माइंड बहुत हेल्दी चाचिंग यानी कि मेंटली अंको फिट चाचिंग दे सो इंसान लगा तेज फिट या हेल्दी जर बन जाए
1: उन्होंने दी मेंटली हेल्दी जर खान पो
0: कसले
1: फिजिकली हेल्दी ना आते थोंजे कहा ला दियो जर मो बार दियो मेन दो गया मना होशियार चिक दो गया कमजोर चिक ना या देने चिक जर बन जाए ना दी मेंटली हेल्दी चीन दोगा तो शिकंग आता जर
0: सम शिक नता फिजिकली लास्ट जन हलाले जैसे नाते फॉर एग्जांपल नाता लजुशी नाते खुर्ची खुर्चा जो नो मिसाल हला ची लाशी गोतना बैलेंस शिका बायन नका तो दे इंसान पोंगाते जर बायन छेन इट साउंड्स यानी कि नाते जर बायन छेन मेंटली खो फिट दुख यानी कि लाशी होत के चीजी ता चोस तांस बा मिसाल गा सों से नंगा सो कल दो खुर तांस से फांस तांस बा हला या गा सों से खुर्ची खुर्स बा दियो खुरेर गप ना गालबा मिंदुगा या फिट दुगा को बैलेंस शीना बायन खान पोला चे जबना चिल्ला शीना बैलेंस शीना बना गतो गाती ब्रेन इना गाती न्यूरॉन्स हो यानी कि गाती मोटर्स हो हालले गाउन बराबर कलास बैलेंस युत ना गतो गाती ओदे न्यूरो मोटर्स गुन गाती बराबर कलो सनो बैलेंस लो सनो गावे जसे गाता मेंटली फिट लो सनो कसले
1: बख्शिस निगातंग मेंटली हेल्दी या फिजिकली हेल्दी दुख पे फिलांगतिस गाती जरी रूटीन पे गाचुक लाजरिक बार गोशिन ची बार गोशिन गातंग हेल्दी लुस पे फिला
0: कसले सबसे पहला गाता हेल्दी लुस पे फिला गाता लास्ट सी का जेना गातो हलाले लास्ट गाता तमियन इन्ना जक्तंग रोजमर्रा के जो भी काम हमारे होते हैं दो गाते बराबर बसे बैलेंस बसे बचाया मतलब कि गाता गातो का इन्ना गाता सुबह जल्दी उठ के गाते ची बचा वॉक बचा हलाले कसा या ना गाते गातो लास्ट गुन जिनटे उतना गातो मावा अन्या ले तो सुखा मिदुक चा हलाले सबसे हेल्दी हेल्दी या फिट पो गाता डाइट का छानो हलाले गोमा खोरा गाता जेना का तो डाइट का छानो ले कसा
1: स्पोर्ट्स पाने जेना का तो एक्सरसाइज बार गोशिन जरे या योगा बार गोशिन जरे छना दी योगा दी एक्सरसाइज सुन गाता गाती अच्छन मन ला खास कर
0: बिल्कुल लास पो बैलेंस नहीं है पोचो चेसले त्यो गाता समय से जरूरी की नोले कसा लास ही ना जेना गतोले तेने गाता अंगाती युलगुन लता ना गतोले दक्षा लोची की कोरी गाता लास यों दोले पूरा एक साल में एक बार गाता लास ही बिनो गाता दक्षे आजकल मुझे नहीं लगता है कि गा थोंग मामिंदु याले कि दंग दिरिया गाते दिल लास गुन बराबर चिके बिंदु जरे गा थोंग मामिंदु याले चेज़े बना दक्षान गाता बिजीक सुंग या गाता लास ही बचा मासुंग या गाता नंगा मीमित पा मिचिचिक दस्ती बेथाला जरे गाता बच्चा मासूम दिया सोच बसे गाते योत खानी लोचिक की कोरी दिया गाता जिंग शंगचा शियोंग मात शमोचा शियोंग मात ओदुन गांग मांग केरे नगाते बिहारी उन लतान ले गाते बामे दे लास उन गाता मां जरूरी खाचा ने नो याले चेज ना शंगन में तू सी मी उन देगा नगाते जमी दो ले खोचे फिट लुसें
1: जबा
0: ओले का सा खोचे हेल्दी लुसें फिट यों मामी दो ले गाती देरु योत माशाला से गाती युल गुन ला ले नमशी नमशी छरमा संग मा लुसो था ले चेज बना खो याले हा डाइट कुना ठीक ठाक जो सनो ले प्लस लास पुंगेरा लास जे सा ले चेज ना कोई लोची की कोरे लास मोमेंट पा जक्तन रेगुलर लास पा कोई बैलेंस नहीं है बोचो सनो ले कसले
1: छोर बचाते हैं।

करना है, अगर हम फेल होते तो कैसे हम उसको डील करना है, अगर हम सक्सेस होते उसमें कामयाब होते तो हम कैसे उसको आगे और प्रमोट करना, आगे और कैसे डील करना है, कम्पीट करना है, चाहे जो दुनगमा दी सोशल यदि प्ले करना तो चाहे दून ऐसा मैटर होता है छना छना आता है यहाँ चीज मैटर चेंज जो आता खेल हमें क्यों एक बड़ा मैटर है जैसे चाहो नीचे में पहला ना सबसे पहला ना कॉग्निटिव एंड फिजिकल जो है आता फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता दिमागी डेवलपमेंट है जो आता कि खेल पुछते से ना आता एक कॉग्निटिव माइंड से हम क्या होते तैयार होते कि हमें उस खेल में कैसे मतलब जीतना है, कैसे खेलना है, हाँ शॉट कैसे मारना है, या जिसमें था और मतलब फुटबॉल खुली लेना है, फुटबॉल में हमें क्या करना होता है फिजिकली और कॉग्निटिवली बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है चल है जो मतलब फिजिकल अच्छी दौड़ मतलब हम उस मैदान में हम जब दौड़ते हैं तो हमें फिजिकली बहुत मतलब काम लेना पड़ता है, फिजिकली हमारे जो पाँव जो है हमारे आईज जो है फोकस रहता है उस वक्त मेंटल माइंड बहुत फोकस रहते हैं चंद दिन का मंगाता फिजिकली एक्टिव लुशा जो है सेकंड चीज पे आता चीन जूस बना सेकंड पो सोशल कनेक्शन लुशा सोशल कनेक्शन चीन जून इज बना आता है नहीं एम्पैथी आता है मतलब एक इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट आता है इन मेन चंद जब जैसे हम लोग खेल शुरू करते हैं मतलब यहाँ समझते हैं चीन आता हमारे दिमाग में भी ये आना चाहिए कि एम्पैथी मतलब ओपोनेंट के साथ मतलब एम्पैथी के लिए जस्टिस के साथ उसको पेश करना चाहिए इन मेन दे मत गेम पुस्तर गेम पुस्तर से ना अच्छी मोशन से बना जीशस मन में ऊंचा मैं ध्यान गेम में कभी लड़ाई नहीं होना चाहिए करना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक जो गेम जो है हमें क्या करना क्या करते प्रमोट करते कि मतलब कॉग्निटिव कनेक्शन करते या सोशल कनेक्शन होते हैं सोशल कनेक्शन चीज बना हर किसी के साथ मतलब एक अच्छा बर्ताव के साथ पेश आना चाहिए छाते अपोनेंट बोला आते अच्छी बच्चा कि अपोनेंट के साथ जब हम खेल रहे होते हैं अपोनेंट के साथ जब हम खेल रहे होते हैं कि मतलब हर चीज का रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी बच्चा फॉलो बच्चा दून गाता हम उन गेम्स से हम क्या करते हैं वो सीखते हैं चुनो बच्चों जो तो ये दून गाता मेंटल बच्चे जो है खेला लो दून यहाँ तीसरा मतलब पुदून जो है मेंटल एंड हेल्थ या सपोर्ट गाता अच्छी बच्चे तो दे जो है मेंटल गाता खेल चाहे मेंटल तो गाती जिंदगी में बना हम मेंटल और हेल्दी मेंटली हेल्दी हमें बहुत सपोर्ट करते जो है जब हम मती देर से दौड़ पे देर से गाता फ्रून ड्रग्स से एडिक्शन छेनो जो है इनमें या गलत लासी का गाती फ्रून जग छेनो छना खेल क्या करते हैं हमारे जिंदगी में एक बड़ा मैटर करते हैं कि मैटर क्या करते हैं कि खुश गाता गेम पे नु गाता दी खेल पे नु गाता मसरूफ नुस बना दे तो दे चंग में लास कुन सिगरेट तुन चंद जरे हाँ जो दे नशा चीज सुन ड्रग्स एडिक्शन जरे उन्हीं देखने गाता ची लुशिन जो गाता थकली लुशिन छन थकली नुस बना गाती सोसाइटी एक हेल्दी लुशिन छन गाती जिंदगी है ना गाता खेल बड़ा मैटर बात जो चाहे ना गाता गाती स्ट्रेस पे जो टेंशन जिंदगी है दे गाती मतलब मीन या गाती जवान उन गाती फुसक एक मतलब परेशानी जाए वो में था चाहे ना दी खेल पुछ बसे गाता अच्छी बात दे स्ट्रेस उन एंजाइटी गाती अच्छी बचन कुला कुला खत्म बचन जो है चाहे ना गाता एक बड़ा मैटर करते कि गाती जिंदगी है ना गाते खेल अपनाई भी दूचा खेल पुस्तेन दूचा टाइम टाइम एक छंता की गाता चिल्लुजोक फिजिकली वेल उस कॉग्निटिव फिजिकली मेंटली हम क्या रहे एक हेल्दी रहे एक हेल्दी सोसाइटी रहे तो ना अच्छा ना आता एक हेल्दी सोसाइटी के लिए हमें खेल बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी है जुया तू मतलब छो बड़ा सवाल चिन जुया उस खेल में हम कैसे इन्वॉल्व रहे हमें टाइम नहीं है जब बदलते टाइम नहीं है तो फिर उसमें हमें टाइम तो नहीं है लेकिन उसमें हमें इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है क्योंकि सोसाइटी में अभी एक मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में सब क्या है जब बिजी है जब आते आते मतलब टाइम छो हमें जूस बात चल आते टाइम जीना आता फिर मरोस क्योंकि हमें अपने शरीर को भी देखना है अपने बॉडी को भी देखना बहुत ही जरूरी है इन मेन छाना साथ ही साथ नहीं आता उधर खेल पे हम कैसे इन्वॉल्व रहे ये एक बड़ा क्वेश्चन है छाना ध्यान दूंगा था दी सोल्यूशन बुद्धि दुख पजुआ इन्वॉल्व कैसे रहे खेल में जैसा कि पहला होना दूंगा था अच्छी वजह गाती गवर्नमेंट इस गाता दी हर मना हर स्टेप गाती गवर्नमेंट इस लेने लियो गवर्नमेंट इस दिस स्टेप लेने की जैसे कि गाता प्रमोट पे कि खेल गाता अच्छी दाम ची गाता जरूरी नजर चाहो चना हर स्कूल लेवल का गाती गवर्नमेंट इस काफी लाजमी फिजिकल एजुकेशन जरे गाता एक सब्जेक्ट

0: subjectly tadaka chikanga tang tang tang youth in support zen chingati pure association chu de haju youth in support national level ka ti india national level ko de chana sports authority of india zere har kons khel zare kons promote betang karate zere ya boxing zere ya baki sag chiz football match cricket match har chiz udun chin play ka hissa hai chuna ma shuju chana ngata udun ke ngata chi bacha har mi sak pe ngata dulab chu janga ta har ek individual is udun chi bacha lencha ta ki ngata chi lu suk physical fit lu suk ngata chi bacha ngata is mala physical fit lu suk chi ngata chi bacha dam participate bacha ya po international day of play je tang jis me mala united nation ek convention jan du de kuji rule chi du jis me ek right to play re मैं एक फंडामेंटल राइट जो जो मत आर्टिकल 31 जरे आज फंडामेंटल राइट का सब तस्को कि एक बेसिक राइट होता है इंडिविजुअल का जिसमें जिसका जो राइट होता है वो हर एक इंडिविजुअल को लाजिम है उसको पहुंचे छाना जो आता एजुकेशन के साथ एक स्टेप बाय स्टेप मत जो एक लर्निंग प्रोसेस जो आता एक प्ले छाना जो ji approach pe jo actively mata de anu participate bachao ek har ek student ko engage karna actively participate karna ye bhi kya hai jo ek learning process hai mata ek learning process do ek education jo ek learning process ek approach in de jo chana united nation is chiz protect bendo ki har ek child ko kya hota hai ki child ko promote har ek individual ko har ek children ko कि क्या करे मिले कि उसको एक फंडामेंटल राइट मैं जैसे कि मतलब इसका मतलब इस दौर में हमें रुके बमा जमीन तुझा फ्री मतलब यहाँ पर ऑफिशियली या अनऑफिशियली मतलब खुद का बेन मतलब रिस्ट्रिक्शन था दे छाना उदू मना एक वायलेशन इन तुझा राइट खुद राइट इच इन वायलेशन इन तो हमें क्या करना है कि उसको क्या करना है प्रमोट करना है chuma chuju chana ngata odu du dichi teams pondu de ju dia de chi 2026 teams pondu international day of play teams puchin ju bana ngata protect play protect child ab hame kya karna hai ki protect play protect childhood matlab chi sonu ngata dia ju bana ki hame ngata chi bacha ki promote bacha gen misa po ngata promote bacha protect bacha ki individuals ki right ko chana hame khel ki ek bada ahmiyat ata chibe nuk international level ka gati jibe national level ka chibe not promote pe not ki usko bahut promote kar rahe aaj ke daur mein zaruri hai dega ta drugs ka bahut shikar ho rahe hain hamare bacche to baki jo galat cheezon se kya karte hain galat cheezon mein involve ho rahe to usse bachne ke liye hame kya karna chahiye hamare har department government ki jo agencies hote hain jo khel ko promote karte hain उनको इफेक्टिवली क्या कर रहे हैं अभी उसको बहुत ही अच्छी तरह मतलब ग्रास रूट लेवल तक उसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि हर कोई बच्चे हर इंडिविजुअल क्या हो गलत चीजों से बचे और अच्छे चीजों में वो क्या करे पार्टिसिपेट करे
1: दरअसल उपाय अंतर्स मंजूर सारी करना इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले स्कॉलर्स ब्रेडरिक म्यानेनोट पिन कसनी प्रोग्रामी संख्या का सहमसुत खेक लिप चुके दंतंग सुपा अखुन बकर जिशान इसका
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

0: मनोज सिन्हा ने कहा है कि खेलकूद के शोबे में सरमाया कारी इस शोबे के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ साथ खिलाड़ियों को बेहतर मौके फराहम करने में मददगार साबित हो सकती है। श्रीनगर में अल्फा हॉकी इंटर स्कूल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के उभरते हुए खिलाड़ी खेलों के शोबे में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करके यूटी का नाम रोशन कर रहे हैं।
1: अल्फा हॉकी स्कूल टूर्नामेंट में जिन खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। उनमें से जो प्रतिभाशाली उनकी आगे की यात्रा का ये पहला कदम है और ये टूर्नामेंट उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। मैं सभी प्लेयर से ये बात कहना चाहता हूँ ताकि भविष्य के लिए भी उनके भीतर नई संभावनाएं पैदा हो सके। जिस नौजवान के जीवन में उद्देश्य हो उसकी ऊर्जा रचनात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि नौजवानों के टैलेंट को अवसर और संसाधन प्राप्त हो सके ताकि वो आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। पिछले कुछ वर्षों में हम सबने देखा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो ठान लिया है, जो तय किया है, उसे पूरा करके दिखाया भी।
0: सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना ईतो ने जिला बड़गाम के बीरवा हल्के में बुनियादी ढांचे के कुछ प्रोजेक्टों की शुरुआत करके सेहत और तालीम के शोबे को एक नई जहत दी है। उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में एक जदीद तरीन लेप्रोस्कोपी यूनिट का इफ्तिताह करने के अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में एक इंतजामी ब्लॉक, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा में ऑडिटोरियम हॉल जबकि गवर्नमेंट हाई स्कूल रटसुना में एक नई इमारत का संग बुनियाद रखा। एमएलए बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी और मुतलका महकमों के बाद सीनियर अहदेदार भी उनके हमराह थे। किसानों की बहबूद के जेएंडके मशावरती बोर्ड के एहतमाम से श्री कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के कैंपस में आज तरक्की पसंद किसानों के लिए एक रोजा तरबियती कैंप मुनक्कद हुआ। इस मौके पर किसानों को काश्तकारी की जदीद और साइंसी तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। किसानों को यूनिवर्सिटी रवाना करने के मौके पर ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि फसल बीमा स्कीम सरकार के ज़ेर गौर है। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हमारे हैं इनको जदीद तरीन जो है टेक्नोलॉजी से इनकी जानकारी हो, लेटेस्ट जो हमारी इनोवेशन होती है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है इनको भी उसकी जानकारी मिले, उसके लिए इनके प्रोग्राम्स होते हैं। और यूनिवर्सिटी में हमारे जो साइंटिस्ट है उनकी नई नई लेटेस्ट इनोवेशन होती है, टेक्नोलॉजी किस तरह अडॉप्ट करते हैं, उस सारी चीजों को लेकर जानकारी लेंगे ताकि अपनी फील्ड में ही उसकी जानकारी को कल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
0: इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज माइक्रोप्लास्टिक्स इन फूड एंड एनवायरनमेंट के मौजू पर एक लेक्चर का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में एकेडमिया, सनत और तहकीकी इदारों से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन ने अवामी सेहत, माहौलियात की देरपाइयत और गजाई सलामती पर माइक्रोप्लास्टिक्स के मुजिर असरात के मौजू पर अपने ख्याल का इजहार किया। कलीदी खुतबा एप्लीकेशन एक्सपर्ट सौरभ जैन ने दिया। वादी की मशहूर झील जीनी मानसबल को तहफ्फुज़ देने और इसकी देरपाइयत को लंबे अरसे तक कायम रखने के लिए इसकी वाटर बजटिंग करना और झील के इर्द गिर्द कायम तमाम सरकारी इमारतों का ग्रीन ऑडिट किया जाना जरूरी समझा जा रहा है। इस मामले पर जीनी मानसबल के किनारे डायरेक्टर न्यूज तारिक राथर से बात करते हुए वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ एहसानुल हक चिश्ती ने कहा कि यह अमल साइंसी पैमाने पर अंजाम देने की जरूरत है।
3: मानसबल लेक है, बहुत सारी वाटर सप्लाई स्कीम्स का सोर्स भी है। ये एक अच्छा खासा फिश का जो प्रोडक्शन है उसका भी एक सोर्स है, नदरू का भी एक सोर्स है। ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हमने कंसर्न एजेंसीज को कहा है कि इसकी एक वाटर बजटिंग की जाए ऑन साइंटिफिक स्केल ताकि इससे हमें ये पता चले कि इसका इनपुट कितना है और आउटपुट कितना दे सकते हैं हम, इसकी कैरियंग कैपेसिटी क्या है, पानी कितना उठाया जा सकता है या नहीं उठा सकता और इसकी लेवलिंग जो होगी। इसका मकसद ये है कि ये जो वेटलैंड है, ये जो लेक है, इसको सस्टेन किया जाए काफी देर तक और वाटर लेवल जो है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो हमने एक लीड लेते हुए ये इनिशिएट किया है कि हम अपने ऑफिसेज, अपने एसेट्स या जो दूसरे सरकारी दफातर यहाँ मानसबल के गिर्द नवा में है उनका एक ग्रीन ऑडिट किया जाए ताकि ये देखा जाए कि कार्बन फुटप्रिंट कितना है, उसका लेवल कितना है और उसको कैसे रिड्यूस किया जाए।
0: जम्मू में वेस्ट वंडर पार्क पर शद्दोमद से काम जारी है और इस पार्क को श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज से पहले खोला जाएगा। ये पार्क जम्मू के भगवती नगर इलाके में तवी दरिया के किनारे पर तकरीबन 40 कनाल जमीन के रकबे पर अमरनाथ बेस कैंप के नजदीक कायम की जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में तैयार किया गया 40 फुट ऊंचा मुजस्मा इत्तेहाद इस पार्क की खास कशिश है। जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अमलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 11 करोड़ रूपये की रकम

0: जा रही है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। पेश हैं बाकी खबरें। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल और गैर मुस्तकम सूरत हाल के बावजूद भारत एतमाद के साथ तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं मीटिंग की सदारत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क विकसित भारत का निशाना हासिल करने की जानिब पेशकदमी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों पर भी नाजुक जिम्मेदारियां आयद होती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी जमात लोगों के आईनी और जमहूरी हकों के तहफ्फुज़ और बहाली के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करती रहेगी। पार्टी के सीनियर लीडर मरहूम गुलाम महीउद्दीन शाह की बरसी के सिलसिले में छतबल श्रीनगर में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। डॉ फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के दीगर लीडरों ने मरहूम लीडर को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और मुआविन जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट चौधरी मोहम्मद रमजान भी मौजूद थे। प्रदेश बीजेपी सदर और राज्यसभा के मेंबर सत शर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार ने जवाबदेही और खिदमत से हुक्मरानी की एक नई इस्तिलाह मुतारिफ कराई है। वो बावे वाली माता मंदिर के नजदीक एक नुमाइश में बोल रहे थे, जहां मोदी सरकार के 12 साल तरक्याती सफर को उजागर किया गया। पार्टी के तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने एक साफ सुथरे और बाजमीर माशरे की तश्कील के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। रामबन में इलाके के अहम शहरियों से मुलाकात के अलावा उन्होंने वहां सफाई सुथराई की एक मुहिम की कयादत भी की। बीजेपी के मीडिया इंचार्ज डॉ प्रदीप महोत्रा ने शायरी को अवाम तक पहुंचने का एक बाअसर जरिया करार दिया है। वो वजीर अजम नरेंद्र मोदी की 12 साल हसूल याबियों से मुतलिक बलबीर राम रतन के शेरी मजमूये तकसीम करने के मौके पर बोल रहे थे। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में अब तर हो रही अमन कानून की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। आज पुंछ जिले में LOC के इलाकों के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि वहां के लोग हमारे भाई बहन हैं। उन्होंने मासूम शहरियों पर की जा रही बर्बरियत की मजम्मत की।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आम बेगुना शहरियों को पकड़ पकड़ कर जेलों के सलाखों में बंद किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अनगिनत लोगों को पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर का इलाका है, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाघ, पलंदरी, यहाँ मार दिया गया है। ये मामला इंसानी हकूकों की खिलाफ वर्जी है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए।
0: रविंदर रैना ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी के 12 साल के दौरे इख्तदार के दौरान मुख्तलिफ शोबों की हसूलियाबियों और कामयाबियों का भी तफसीली तज़किरा किया। MLA पुलवामा वहीदुरहमान पर्रा ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स पुलवामा में वकला के लिए आरजी केबन तामीर करने की खातिर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड में से 20 लाख रूपये वागुजार करने की सिफारिश की है। इस सिलसिले में MLA मौसूफ ने जिले के चीफ प्लानिंग ऑफिसर के नाम एक मकतूब में जरूरी कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की मजमुई और पायदार तरक्की यकीनी बनाने के लिए समाज के हर तबके पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं। श्रीनगर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस मकसद के लिए अपना कलीदी रोल अदा करें। जम्मू कश्मीर के बेशतर सियाहती मकामात पर इन दिनों काफी रौनक और चहल पहल देखने को मिल रही है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की एक बड़ी तादाद कश्मीर की सैर पर आकर यहां के कुदरती नजारों से महसूस हो रही है। सयाह मकामी लोगों की मेहमान नवाजी और यहां के मौसम से काफी खुश नजर आ रहे हैं। चंद सयाहों के तासुरात।
2: कुदरत ने बनाया एक करिश्मा है, उसे कश्मीर कहते हैं। धरती ये सहना सिखाती है, यहाँ की जो सरिता है वो बहना सिखाती है, और कश्मीर ये हमें जिंदगी जीना सिखाती है। कश्मीर की वादियों में, हवाइयों में, हर एक कोने कोने में खूबसूरती छुपी हुई है।
3: मुझे बहुत ही अच्छा लगा, माननीय मोदी जी ने संदेश दिया है कि आप अपने देश की जन्नत जो कश्मीर है, जितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, जिसमें प्राकृतिक एडवेंचर है, जो अपन विदेश में जाके देखते हैं वो अपन यहाँ लोकल देखना चाहिए।
2: मुझे 3 दिन हो गए, लेकिन यहाँ पे लोगों में मेरे बहुत इंसानियत, उनका जो बोलना है

0: अमन चैन और भाईचारा है। यहाँ पे जो अपने मुस्लिम भाई भी है वो भी अपने साथ और अच्छे सहयोगी है, उनका नेचर भी अच्छा है।
1: खलीफा दौम अमीर उलमोमिनीन सैयदना हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की यौमी शहादत के सिलसिले में शनिचरवार 13 जून को आसारी शरीफ शहरी कलाशपोरा में एक दीनी मजलिस मुनाकिद होगी। इस मौके पर मीरवाइस मौलवी रियाज अहमद हमदानी अमीर उलमोमिनीन की सीरत बयान करेंगे। पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने खान साहब में हजरत सैयद सालेह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में अकीदतमंदों के लिए तमाम सहूलियात दस्तियाब रखने की इंतजामिया से अपील की है और उसकी तकरीब रवां महीने की 21 तारीख को मनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर मुनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। एलजी का पैगाम,
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से आर्मी गुडविल स्कूल अनंतनाग की एक तालिबा हामिया मुख्तार ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: मिटाएंगे इस नासूर को जड़ से, चलो आज ये अहद हम दोहराए। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान हमारे खित्ते को तन्हाई, उदासी और तबाही के अंधेरों से निकालकर एक ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ ले जाने का अजम है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान सिर्फ एक हुकूमती मुहिम नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब समाजी बेदारी का सफर है। आओ सब मिलकर नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाए, हर घर में उम्मीद का दिया जलाए और अपनी वादी को अमन और सेहत का गहवारा बना दे।
1: इहात-ए-वकार छानपोरा श्रीनगर में आज मुनशियात के मुजिर असरात के बारे में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर इदारे के चेयरमैन अब्दुल गनी परे के अलावा दूरदर्शन के साबिक डायरेक्टर शब्बीर मुजाहिद, आकाशवाणी श्रीनगर की साबिक प्रोग्राम सरबरा रुखसाना जब्बीन और दीगर कई अहम शख्सियात भी मौजूद थी। उन्होंने मुनशियात के खिलाफ सीनियर शहरियों का अहम रोल उजागर किया। मुकर्ररीन ने कश्मीर वादी में सरसरी तखमीनों के मुताबिक 15 लाख नौजवानों के इस लत में पड़े होने पर तश्वीश का इजहार किया। अनंतनाग पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अब तक 156 स्मगलरों को गिरफ्तार करके 172 मामला दर्ज कर लिए हैं। जिले में 16 करोड़ रुपए मालियत के असासों को भी कार्रवाईयों के तहत लाया गया है। इस दौरान पुलवामा पुलिस ने आज 2 स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मनुष्यात की कुछ मिकदार बरामद कर ली। दरियासना, गांधरबल और सोपोर इलाकों में पुलिस ने भंग की बड़ी मिकदार को तबाह किया है। और अब रेल खिदमात से मुतलिक ये खबर, शुमाली रेलवे ने मुसाफिरों के मौजूदा रश को देखते हुए 3 रेलगाड़ियों में 3rd एसी का एक इजाफी कोच जोड़ने का फैसला किया है, जिससे ज्यादा मुसाफिरों को कन्फर्म सीट मिलने का ज्यादा इम्कान रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रामबन की जानिब से जारी करदा एक इत्तला के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के नचलाना पट्टी पर जारी बहाली के काम के चलते ये स्ट्रेच 12 जून से 17 जून तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहा करेगी। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के मुताबिक ये फैसला मुसाफिरों की सहूलत के लिए लिया गया है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए नेशनल हाईवे के SSP ट्रैफिक राजा आदिल हमीद गनाई ने कहा,
4: कम्यूटर्स की जो है उनकी सेफ्टी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने DC रामबन से 3 दिन का जो है हल्टेज लिया है ताकि नाचलाना और हिंगनी के बीच का जो रूट स्ट्रेच है, ये क्रिटिकल बड़ा जो स्ट्रेच है, इसका जो है रिपेयर और मेटाडमेशन किया जाए। इसके चलते चलते जो है इन 3 दिनों में 12 जून, 14 जून और 16 जून रात को 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक जो है किसी भी किस्म की गाड़ी को नवीब टनल और चेन्नई नासिक टनल के बीच में जो है करने की नहीं
1: जाएगी। मौसम, महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

0: बेमिसाल जीत हासिल करके उसी साल 26 मई को पहली बार वजारती उज़्मा का ओहदा संभाला और बाद 2019 में दूसरी बार और 2024 में तीसरी बार जीत हासिल करके मुल्क की कमान अपने हाथों में संभाली। उनकी इस पायदर पर जीत के पीछे मुहरिकात में उनकी मुल्क व कौम की खुशहाली की उनकी दिन रात अनथक मेहनत कार फरमा है, जिसकी बदौलत उन्होंने आम लोगों खासकर गरीबों के दिल जीत लिए। उन्होंने बेशुमार ऐसी फलाही स्कीमों को मुतारिफ कराया जिनकी बदौलत अवाम के दिन बदल गए और वो एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के काबिल हुए। बदले में लोगों ने भी उनको वोट देकर हक अदाई का फर्ज निभाया। अवाम के लिए उनकी तरफ से मुतारिफ करदा स्कीमों में लोगों के लिए पक्के घर, बिजली की सहूलत, साफ पानी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और बुनियादी ढांचे की तामीर वगैरह शामिल है। 2019 में कोविड बीमारी के वक्त उन्होंने तमाम बाशिंदों के लिए मुफ्त राशन का ऐलान किया और तब से लेकर आज तक मुल्क के 80 करोड़ अवाम मुफ्त राशन हासिल कर रहे हैं। किसानों के लिए उन्होंने पीएम किसान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीमें मुतारिफ कराई। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, वजीर आजम बनने के साथ ही यहाँ की तामीर और तरक्की उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल रही। खिते के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर के साथ साथ समाजी बहबूद की स्कीमें, सन्नती शोबे का फरोग, यूटी के लिए खसूसी पैकेजेस, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स, लाडली बेटी और आयुष्मान भारत के तहत यूटी के तमाम बाशिंदों के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कुछ ऐसी स्कीमों के नाम हैं जिनसे जम्मू कश्मीर के अवाम के हालात बदल कर रह गए हैं। गरज वजीर आजम की इन 12 बरसों के दौरान कारकर्दगी तमाम पब्लिक सर्वेंट्स के लिए एक मिसाल राह है कि अवाम की बहबूदी के लिए काम कैसे किया जाना चाहिए। तबसरा खत्म हुआ, शब बखैर।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज।
2: सामिन मोहतरम, अभी तक आप आकाशवाणी श्रीनगर से उर्दू में खबरें और तबसीरा समाप्त कर रहे थे। मीडियम पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। रात के 8 बजा हुआ जाता है। पेश खिदमत प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद। संगीत से भरा हुआ फौजी भाइयों का ये मनपसंद प्रोग्राम लेकर फिर से एक बार आपका दोस्त आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तमाम प्रोग्राम सुनने वाले दोस्तों और फौजी भाइयों को मेरा प्यार भरा आदाब। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं प्रोग्राम की पहली पेशकश उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में।

मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

लीजिए फौजी भाइयों, सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा तेजाब फिल्म से अमित कुमार और अनुराधा पोठवाल की आवाजों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सिटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।

0: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।

ईशारानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलब हो गईं। उसने अमरीका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। मैक्सिको के स्टेडियो एस्टिका में पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल और इक्तिसादी चैलेंजों का सामना है, भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को लगातार तहरीक दे रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने खुद किफालत के तईं मुल्क के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत को उजागर किया और दुनिया की बेहतरीन अमल आवरियों बिलखसूस काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के तौर तरीकों को इख्तियार करने और उन पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि अब जबकि भारत विकसित भारत के तसव्वुर की ताबीर की हुसूलियाबी की जानिब पेशरफ्त कर रहा है, मरकज और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की स्कीम पर तवज्जो मरकूज करें और इसके ताल्लुक से बरामदात के लिए मौजू हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को एक उभरता हुआ सेक्टर करार दिया, जिसमें भारत अपनी इम्तियाजी शनाख्त कायम कर रहा है, और रियासतों को तरगीब दी कि वो इस तरक्की से रूनुमा होने वाले मौके से फैज उठाने के लिए पॉलिसियां वजा करें। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी ने आज कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की गरज से बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बाइख्तियार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फरोख के मौजू पर तबादला ख्याल में तमाम 28 रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। इसमें तालीम, सेहत, देखभाल और रोजगार जैसे कलीदी शोबों का अहाता किया गया। जनाब लहरी ने कहा कि नीति आयोग ने वज़राए आला के बामकसद नजरियात और उनकी मुतालिका रियासतों में किए जा रहे काम से इस्तेफादा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस मीटिंग से तफसीली खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि एक बेहतर तालीम याफ्ता और हुनरमंद आबादी भारत की तरक्की के लिए लाजमी है। मगरबी एशिया के बुहरान से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब लहरी ने कहा कि वजारत खारजा सूरत हाल को मुनासिब तरीके से हैंडल कर रही है, जबकि अफरादी कुव्वत की तरक्की पर मरकूज तवज्जो में कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि तबादला ख्याल के दौरान शमसी तवानाई, जोहरी तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग पर भी खास तौर पर तवज्जो दी गई। नीति आयोग के रुकन राजीव गौबा ने कहा कि तबादला ख्याल में एक और कलीदी शोबा मंसूबा बंद शहरकारी था। उन्होंने वादे किया कि नीति आयोग मुल्क में शहरी हुक्मरानी की काया पलट की गरज से एक

0: कहा कि मुल्क के पूरे सरहदी इलाकों में कश्मीर से लेकर कच्छ तक आकाशवाणी और दूरदर्शन की कवरेज को मुस्तहकम करने के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं, जिसके तहत नए FM ट्रांसमीटर और नशरियाती बुनियादी ढांचे की तामीर की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भारत में सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर फराइज अंजाम देने पर मुबारकबाद दी है, जो कि मुल्क के जमहूरी सफर में एक तारीखी संगे मील है। सोशल मीडिया की एक सीरीज में शेख मोहम्मद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जदीद भारत की तारीख में हुकूमत के मुंतखब सरबराह के तौर पर सबसे तवील मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने भारत की क्यादत करने में जनाब मोदी की मुसलसल कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और हालिया बरसों में मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान ताल्लुकात में नुमाया पेशरफ्त को उजागर किया। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बा इख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदामात किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा खुसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ्फुज को मुस्तहकम करने के लिए बहुत सी अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीब के लिए मकान मोदी हुकूमत की तवज्जो का अहम शोबा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रियासतों को 4 करोड़ से ज्यादा मकान देही इलाकों में इक्तसादी तौर पर कमजोर कुनबों के लिए सौंपे गए हैं। गजा की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी इसी दौरान PM सेवा निधि स्कीम के तहत अभी तक खांजा फरोशों को 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा कर्ज फराहम किए गए हैं। भारत के समाजी तहफ्फुज का अहाता जो 2015 में 19% था, इसमें तेजी के साथ इजाफा होकर 2025 में 64% से ज्यादा हो गया है। आकाशवाणी से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े हमलों से खबरदार किया है और उसने मुतनब्बे किया है कि वो ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के अहम हिस्सों का कंट्रोल हाथ में ले लेगा। इस तरह मगरबी एशिया में कशीदगी और ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान पर इंतहाई सख्त हमला करेगा और बिलाखिर तवानाई के अहम असासों का कंट्रोल हासिल कर लेगा, जिसमें खर्क जजीरे का ऑयल टर्मिनल शामिल है। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमरीका और ईरान लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इधर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरीन और उर्दून में निशाना बनाकर जवाबी हमले किए और इस तरह खित्ते में तनाजे के वसत इख्तियार करने के सिलसिले में तश्वीश पैदा हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से उत्तराखंड के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो रही हैं। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 158वीं रेगुलर कोर्स और 141वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की परेड का जायजा लेंगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 2 मरतबा ओलंपिक मेडल याफ्ता सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में ईशा रानी बरवा को 22-20, 21-12 से शिकस्त दी। अब उनका मुकाबला चेन सू यू से होगा। एक और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जिसमें दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने थे, तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड़ को 21-13, 21-15 से शिकस्त दी। फीफा आलमी कप 2026 का आगाज आज मेक्सिको शहर के तारीखी स्टेडियम स्टेडियो एस्टिका में होगा। इसके साथ ही 1 माह से ज्यादा अरसे तक चलने वाले इस अजीमुशान टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा। इफ्तिताही मुकाबले के ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। अब तक का यह सबसे बड़ा आलमी कप होगा, जिसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें 104 मैच खेले जाएंगे, जो अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में होंगे। आखिर में ब्लटन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को